गावन तुदनो मोहनिया मन मोहन सुरग मश पयाले गावन तुदनो रतन उपाए तेरे आठ साठ तीरथ नाले गावन तुदनो जोद महाबल सूरा गावन तुदनो खाणी चारे गावन तुदनो खांड मंडल ब्रह्मंडा कर कर रखे तेरे तारे से तुदनो गावन जो तुद पावन रते तेरे भगत रसाले होर केते तुदनो गावन से मैं चित ना आवन नानक क्या बिचारे सोई सोई सदा साचो साहिब साचा साची नाई है पी होसी जाए ना जासी रचना जिन रचाई रंगी रंगी पाती कर कर जिनसी माया जिन उपाई कर कर देखै कीता अपना ज्यों तिस दी वड्याई जो तिस भावै सोई करसी फिर हुक्म न करना जाई सुपात साहो साहपत साहेब नानक रहन रजाई आसा महला पहला सुन वड्डा आखै सब कोए के वड वड्डा डीठा होए कीमत पाए ना कहया जाए कहने वाले तेरे रहे समाए।

रहाउ। सब सुरती मेल सुरत कमाई, सब कीमत मेलो कीमत पाई। ज्ञानी ध्यानी गुर गुरहाई, कहन न जाई तेरी तिल वड्याई। सब सत सब तप सब चंगे आईया, सिद्धां पुरखा किया वड्याईया।

जिस तू देह तिसै क्या चारा, नानक सच सवारण हारा। आसा महला पहला, आखां जीवा विसरै मर जाओ, आखण औखा।

दुख सो क्यों विसरै मेरी माए साचा साहिब साचे नाए रहाओ साचे नाम की तिल वड्याई आख थके कीमत नहीं पाई जे सब मिलकै आखण पाहे वड्डा ना होवै घाट ना जाए ना उह मरै ना होवै सोग देंदा रहै ना चूकै भोग गुण एहो होर नाही कोए ना को होआ ना को होए जे वड आप ते वड तेरी दात जिन दिन कर कै कीती रात खसम विसारै ते कम जात नानक नावै बाज सनात राग गुजरी महला चौथा हर के जान सत गुर सत पुरखा बिनो करो गुर पासु

सत संगत मिले सो तरिया, गुर प्रसाद परम पद पाया, सूके काष्ट हरिया रहाउ। जनन पिता लोक सुत बनता, कोई न किस की तरिया, सिर सिर रिजक संबाहे ठाकुर, काहे मन पौ करिया। ऊडे ऊड आवै सै कोसा, तिस पाछै बचरे शरिया, तिन कवन खलावै कवन चुगावै, मन मैं सिमरन करिया। सब निदान दस अष्ट सिदान, ठाकुर कर तल धरिया। जन नानक बल बल साध बल जाइऐ, तेरा अंत न परावरिया। राग आसा महला चौथा, सो पुरख एक ओंकार सतगुर प्रसाद। सो पुरख निरंजन हर पुरख निरंजन, हर अगम अगम अपारा, सब त्यावै सब त्यावै तुद जी, हर सच्चे सिरजनहारा। सब जी तुम्हारे जी, तू जिया का दातारा, हर त्यावह संतो जी, सब दुख विसारण हारा। हर आपे ठाकुर हर आपे सेवक जी, क्या नानक जंत विचारा। तू घट घट अंतर सर्ब निरंतर जी, हर एको पुरख समाना, एक दाते एक पेखारी जी, सब तेरे चोज विडाना। तू आपे दाता आपे भुगता जी, हों तुद बिन अवर ना जाना। तू पार ब्रह्म बेअंत बेअंत जी, तेरे क्या गुण आख वखाणा। जो सेवह तुद जी, जन नानक तिन कुरबाणा। हर त्यावै तुद जी, से जन जुग मैं सुखवासी, से मुकत पाए जिन हर त्याया जी, तिन टूटी जम की फासी। जिन निरपौ जिन हर निरपौ त्याया जी, तिन का पौ सब गवासी। जिन सेवया मेरा हर जी, ते हर हर रूप समासी। से तन जिन हर त्याया जी, जन नानक तिन बल जासी। तेरी भगत भंडार जी, भरे बेअंत बेअंता, तेरे भगत सलाहन तुद जी, हर अनेक अनेक अनंता।

पड़े बहु सिमरत शासत जी, कर किरिया खट कर्म करंता। से भगत भले जन नानक जी, जो भावै मेरे हर भगवंता। तू आद पुरख अपरंपर करता जी, तुद जेवड अवर ना कोई। तू जुग जुग एको सदा सदा तू एको जी, तू नेह चल करता सोई। तुद आपे भावै सोई वरता जी, तू आपे करै सो होई। तुद आपे सृष्ट सब उपाई जी, तुद आपे सिरज सब गोई। जन नानक गुण गावै करते के जी, जो सब सह का जानोई। आसा महला चौथा, तू करता सचियार मेंढा साई। जो तौ भावै सोई थीसी, जो तू देहे सोई हो पाई। रहाओ सब तेरी तू सबनी त्याया, जिसनू कृपा करै तिन नाम रतन पाया। गुरमुख लादा मन मो

तुद बिन दूजा अवर ना कोए। तू कर कर वेखै जाणै सोए, जन नानक गुरमुख प्रगट होए। आसा महला पहला, इत सरवरड़ै पहिले निवासा। पाणी पावक तिन्हे किया, पंकुज मोह पग नहीं चालै। हम देखा तह डूबी अले, मन एक ना चेतस मूड मना। हर बिसरत तेरे गुण गलया रहाओ। ना हों जति सती नहीं पड़या, मूर्ख मुगधा जन्म पाया। प्रणवत नानक तिनकी सरणा, जिन तू नाहीं विसरया। आशा महला पंजवा।

नाम लाग भव जल तरन कै जानम वृथा जात रंग माया कै रहाऊ।

एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह। पातशाही दसवीं कबियो बाच बेनती चौपाई। हमरी करो हाथ दय रक्षा, पूरन होए चित की इच्छा। तब चरणन मन रहे हमारा, अपना जान करो प्रतपारा। हमरे दुष्ट सब तुम का वह, आप हाथ दय मोहे बचावह। सुखी बसै मोरो परिवारा, सेवक सिख सबै कर तारा। मोर अच्छा निज कर दय करिय, सब बैरन को आज संगरिय। पूरन होए हमारी आशा, तोर भजन की रह प्यासा। तुम्हें शाड कोई अवर ना त्याऊ, जो बर चाहू सो तुम ते पाऊ। सेवक सिख हमारे तारिए, चुन चुन सत्र हमारे मारिए। आप हाथ दय मुझे उबरी है, मरण काल का त्रास निवरी है। पूजो सदा हमारे पच्छा, श्री अस तो जजु करे हो रक्षा। राख ले हो मोहे राखन हारे, साहेब संत सहाय प्यारे। दीन बंद दुष्टन के हंता, तुम हो पूरी चतुर दास कंता। काल पाए ब्रह्मा बपतरा, काल पाए शिवजू अवतरा। काल पाए कर बिशन प्रकाशा, सकल काल का किया तमाशा। जवन काल जोगी सेव कियो, वेदराज ब्रह्मा जू थियो। जवन काल सब लोक सवारा, नमस्कार है ताहे हमारा। जवन काल सब जगत बनायो, देव दैत जक्षण उपजायो। आद अंत एक अवतारा, सोई गुरु समझियो हमारा। नमस्कार तिस ही को हमारी, सकल प्रजा जिन आप सवारी। सेवकन को सेव गुण सुख दियो, सत्रन को पालमो बाध कियो। काट काट के अंतर की जानत, भले बुरे की पीर पशानत। चीटी ते कुंचर अस थूला, सब पर कृपा दृष्ट कर फूला। संतन दुख पाए ते दुखी, सुख पाए साधन के सुखी। एक एक की पीर पछानै, घट घट के पट पट की जानै। जब उद करख करा करतारा, प्रजा धरत तब देहे अपारा। जब अकरख करत हो कब हूं, तुम मैं मिलत देह धर सब हूं। जेते बदन श्रेष्ठ सब तारै, आप आपनी बूझ उचारै। तुम सब ही ते रहत निरालम, जानत बेद भेद अर आलम। निरंकार निर्विकार निर्लंभ, आद अनिल अनाद असंभ। ताका मूड उचारत भेदा, जाको भेव न पावत बेदा।

रंक पयो राव कहि पूपा, अंडज जेरज से तज कीने, उत पूज खान बहुर राच दीने। कहूं फूल राजा हुए बैठा, कहूं सिमट पयो संक्र इकैठा।

मेरी तुम करो, सिख उबारो असिख संगरो, दुष्ट जिते उठवत उत्पाता, सकल मलेश करो रण खाता, जे अस तुज तब सरनी परे, तिनके दुष्ट दुख तहावै मरे, पुरख जवन पग परे तिहारे, तिनके तुम संकट सब टारे, जो कल को एक बार त्याय है, ताके काल निकट नह है, रक्षा होए ताहे सब काला, दुष्ट अरिष्ट टरै तत्काला, कृपा दृष्ट तन जाहे नहर हो, ताके ताप तनक मुँह हरे हो, रिद्ध सिद्ध कर मुँह सब होई, दुष्ट शाह श्वाय सकै न कोई, एक बार जिन तुम्हें संभारा, काल फास ते

दुष्ट दोख ते ले हो बचाई। सवैया पाए गहे जब ते तुमरे, तब ते को आंख तरे नहीं आने।

करती है। साचा नाम मेरा आधारो, साच नाम आधार मेरा, जिन भुखा सब गवाइया, कर सांत सुख मन

जिसका सबसे आधारो। जे को खावे जे को पुंचे तिसका होए उधारो। एह वस्त तजी नह जाई नित नित राख उरतारो। तम संसार चरण लग तरिये सब नानक ब्रह्म पसारो। सलोक महला पंजवां।

ਵਾਤ ਦੇ ਜਗ ਮਹਿ ਉੱਤਮ ਕਾਢੀਐ ਵਿਰਲੇ ਕੇਈ ਕੇ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ।

इस साहिब की टेक नानक मन माहे जिससे

श्री हर कृष्ण त्याई है जिस जिठै सब दुख जाए। तेग बहादुर सिमरै घर नौ निध आवै ताए सब थाई हुए सहाय। दसवें पातशाह साहिब श्री गुरु गोबिंद

नानक की अरदास सुख होटल गुरु सेवी है एहनिस सहज सुभा।

मनमुख भूले अंध गावार, भिख्या कै धन सदा दुख होए।

तिन सद बलिहारी, प्रभ को सिमरह से मुख सुहावे, प्रभ को सिमरह तिन सुख बिहावे, प्रभ को सिमरह तिन आत्म जीता, प्रभ को सिमरह तिन निर्मल रीता, प्रभ को सिमरह तिन आनंद कनेरे, प्रभ को सिमरह बसै हर नेरे, संत कृपाते अन दिन जाग, नानक सिमरन पूरे भाग, प्रभ के सिमरन कारज पूरे, प्रभ के सिमरन कबहु न चूरे, प्रभ के सिमरन हर गुण बानी, प्रभ के सिमरन सहज समानी, प्रभ के सिमरन निचल आसन, प्रभ के सिमरन कमल विगासन, प्रभ के सिमरन अनहद चुनकार, सुख प्रभ सिमरन का अंत न पार, सिमरह से जन जिनको प्रभ मया, नानक तिन जन शरणी पाया, हर सिमरन कर भगत प्रगटाए, हर सिमरन लग भेद उपाय, हर सिमरन पय सिद्ध जति दाते, हर सिमरन नीच जहु कुंट जाते, हर सिमरन धारी सब धरना, सिमर सिमर हर कारण करना, हर सिमरन कियो सगल कारा, हर सिमरन मैं आप निरंकारा, कर कृपा जिस आप बुझाया, नानक गुरमुख हर सिमर

नानक के प्रभ साथ अष्टपदी जह मात पिता सुत मीत न भाई मन उहा नाम तेरे संग सहाई जह मा भ्यान दूत जम दलै तह केवल नाम संग तेरे चलै जह मुश्किल होवे अत भारी हर को नाम खिन माहे उदारी अनक पुनः चरण करत नहीं तरै हर को नाम कोट पाप पर हरै गुरमुख नाम जपो मन मेरे नानक पाओ सुख कनेरे सगल सिष्ट को राजा दुखिया हर का नाम जपत हुए सुखिया लाख करोरे बंध न परै हर का नाम जपत निस्तरै अनक माया रंग तिख न बुझावै हर का नाम जपत आगावै जिह मार्ग इह जात अकेला तह हर नाम संग होत सुहेला ऐसा नाम मन सदा धियाइए नानक गुरमुख परम गत पाइए छूटत नहीं कोट लख बाही नाम जपत तह पार पराही अनक बिघन जह आए संघारै हर का नाम तत्काल उधारै अनक जोन जनमै मर जाम अनक जोन जनमै मर जाम नाम जपत पावै विश्राम हौ मैला मल कबू न धोवै हर का नाम कोट पाप खोवै ऐसा नाम जपो मन रंग नानक पाइये साध के संग जह मार्ग के गने जाहे न कोसा हर का नाम उहा संग तोसा जह पैंडह मह अंध गुबारा हर का नाम संग उजियारा जहां पंथ तेरा को ना सिजानू हर का नाम तह नाल पछानू जह मां भ्यान तप्त बहु काम तह हर के नाम की तुम ऊपर छाम जहां त्रिखा मन तुझ आकर खै तह नानक हर हर अमृत बरखै भगत जना की बर्तन नाम संत जना के मन विश्राम हर का नाम दास की ओट हर के नाम उधरे जन कोट हर जस करत संत दिन रात हर हर औखद साधक मात हर जन के हर नाम निदान पार ब्रह्म जन की नोदान मन तन रंग रति रंग इकै नानक जन के बिरत विवेकै हर का नाम जन को मुक्त जुगत हर के नाम जन को तृप्त भुगत हर का नाम जन का रूप रंग हर नाम जपत कब परे न भंग हर का नाम जन की वडियाई हर के नाम जन शोभा पाई हर का नाम जन कौ भोग जोग हर नाम जपत कछ नाहे वियोग जन राता हर नाम की सेवा नानक पूजे हर हर देवा हर हर जन के माल खजीना हर धन जन को आप प्रभ दीना हर हर जन के ओट सताणी हर प्रताप जन अवर न जानी ओत पोत जन हर रस राते सुन समाद नाम रस माते आठ पहर जन हर हर जपै हर का भगत प्रगट नहीं छपै हर की भगत मुक्त बहु करे नानक जन संग केते तरे पार जात हो हर को नाम काम तेन हर हर गुण गाम सब ते उत्तम हर की कथा नाम सुनत दर्द दुख लथा नाम की महिमा संत रिद्वसै संत प्रताप दुर्त सब नसै संत का संग वडभागी पाइये संत की सेवा नाम ते आइये नाम तुल कछ अवर ना।

जस नाही हर हरे नानक नाम मोल अष्टपदी। जाप ताप ज्ञान सब ध्यान खट शास्त्र सिमृत वख्यान जोग व्यास करम त्रम किरिया सगल त्याग बन मुद्दे फिरिया अनेक प्रकार किए बहुजतना पुन्न दान हो मैं बहुरतना शरीर कटाए हो मैं कर राती वर्त नेम करें बहु पाती नहीं तुल राम नाम बीचार नानक गुरमुख नाम जपिए एक बार नौखंड पृथ्वी फिर चिर जीवै महा उदास तपीसर थीवै अगन माहे होमत प्राण कनक अश्व है वरभूम दान न्योली कर्म करै बहु आसन जैन मार्ग संजम अत साधन निमख निमख कर शरीर कटावै तो पी हो मैं मैल न जावै हर के नाम संसर कछ नाहे नानक गुरमुख नाम जपत गत पाहे मन कामना तीर्थ देह छुट्टै गर्भ गुमान न मन ते हुट्टै सोच करै दिनस अर रात मन की मैल न तन ते जात इस देही को बहु साध न करै मन ते कबहू न भिख्या टरै जल धोवै बहुत ही अनीत शुद्ध कहाँ होय काची पीत मन हर के नाम की महिमा ऊच नानक नाम उधरे पतत बहुमूच बहुत स्याणप जम का पौ व्यापै अनक जतन कर कृष्ण न त्रापै भेख अनेक अग्न नहीं बुझै कोट उपाव दरगह नहीं सिझै छूट सनाही ऊब प्याल मोह व्यापह माया जाल अवर करतूत सगली जम डानै गोविंद भजन बिन तिल नहीं मानै हर का नाम जपत दुख जाए नानक बोलै सहज सुभाए चार पदार्थ जे को मांगै साध जना की सेवा लागै जे को अपना दुख मिटावै हर हर नाम हृदय सदगावै जे को अपनी शोभा लोरै साध संग एह हो मैं छोरै जे को जन्म मरण ते डरै साध जना की शरणी परै जिस जन को प्रभ दर्श प्यासा नानक ता कै बल बल जासा सगल पुरख मैं पुरख प्रधान साध संग जाका मिटै अभिमान आपस कौ जो जाने नीचा सो गनिए सब ते ऊंचा जा का मन हुए सगल की रीना हर हर नाम तिन घट घट जीना मन अपने ते बुरा मिटाना पेखै सगल शिष्ट साजना सुख दुख जन सम दृष्टिता नानक पाप पुन नहीं लेपा निर्धन को तन तेरो नाओ निथावे को नाओ तेरा थाओ निमाने को प्रभ तेरो मान सगल कटाको देवहु दान करण करावण हार स्वामी सगल कटाके अंतर जामी अपनी गत मित जान हो आपे अपन संग आप प्रभराते तुमरी उस्तत तुमते होए नानक अवर न जान सकोए सर्ब धर्म मह श्रेष्ठ धर्म हर को नाम जप निर्मल कर्म सगल क्रिया मह उत्तम किरिया साध संग दुर्मत मल हिरिया सगल उदम है उदम भला हर का नाम जपो जी सदा सगल बानी मह अमृत बानी हर को जस सुन रसन बखानी सगल थान ते ओ उत्तम थान नानक जह घट वस।

साध जना की अचर्ज कथा अष्टपदी। साध के संग मुख उजल होत, साध संग मल सगली खोत। साध के संग मिटे अभिमान, साध के संग प्रगटे सुज्ञान। साध के संग बुझे प्रभ नेरा, साध संग सब होत निबेरा। साध के संग पाए नाम रतन, साध के संग एक ऊपर जतन। साध की महिमा वर्णै कौन प्राणी, नानक साध की शोभा प्रभ महेश मानी। साध के संग अगोचर मिले, साध के संग सदा प्रफुल्ले। साध के संग आवह बस पंचा, साध संग अमृत रस पुंचा। साध संग हुए सबकी रेन, साध के संग मनोहर बैन। साध के संग न कतहूं तावे, साध संग अस्थित मन पावे। साध के संग माया ते भिन्न, साध संग नानक प्रभ सो प्रसन्न। साध संग दुश्मन सब मीत, साधु के संग महापुनीत। साध संग के सिउ नहीं बैर, साध के संग ना बीगा पैर। साध के संग ना ही को मंदा, साध संग जाने परमानंदा। साध के संग ना ही हो ताप, साध के संग तजै सब आप। आपे जाने साध बढ़ाई, नानक साध प्रभु बने आई। साध के संग ना कबहू तावे, साध के संग सदा सुख पावे। साध संग बस अगोचर लह, साधु के संग अजर सह। साध के संग बसै थान ऊंचे, साधु के संग महल पहुंचे। साध के संग गृढ़ सब धर्म, साध के संग केवल पार ब्रह्म। साध के संग पाए नाम निदान, नानक साधु के कुर्बान। साध के संग सब कुल उदार है, साध संग साजन मीत कुटुंब निस्तार है। साधु के संग सो धन पावे, जिस धन ते सबको वरसावे। साध संग धर्म राय करे सेवा, साध के संग शोभा सुरदेवा। साधु के संग पाप पलायन, साध संग अमृत गुण गायन। साध के संग सर्वथान गम, नानक साध के संग सफल जन्म। साध के संग नहीं कश काल, दर्शन भेटत होत निहाल। साध के संग कलुखत हरै, साध के संग नरक पर हरै। साध के संग इहां उहां सहेला, साध संग बिछरत हर मेला। जो इच्छा सोई फल पावे, साध के संग ना बिरथा जावे। पार ब्रह्म साध रित बसै, नानक उधरै साध सुन रसै। साध के संग सुनो हर नाव, साध संग हर के गुण गाओ। साध के संग ना मन ते बिसरै, साध संग सर पर निसरै। साध के संग लगै प्रभ मीठा, साधु के संग घट घट डीठा। साध संग पए आज्ञाकारी, साध संग गत पई हमारी। साध के संग मिटे सब रोग, नानक साध पेटे संजोग। साध की महिमा वेद न जानै, जेता सुनै तेता बख्यानै। साध की उपमा ते गुण ते दूर, साध की उपमा रही भरपूर। साध की शोभा का नाही अंत, साध की शोभा सदा बेअंत। साध की शोभा ऊंच ते ऊंची, साध की शोभा मूच ते मूची। साध की शोभा साध बने आई, नानक साध प्रभ भेद न पाई। श्लोक। मन साचा मुख साचा सोए, अवर न पेखै एकस बिन कोए। नानक एह लक्षण ब्रह्म ज्ञानी होए। अष्टपदी। ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्लेप, जैसे जल में कमल अलेप। ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्दोख, जैसे सूर सर्प को सोख। ब्रह्म ज्ञानी के दृष्ट समान, जैसे राज रंक को लागे तुल्पवान। ब्रह्म ज्ञानी के धीरज एक, ज्यों बसदा को खोदे को चंदन लेप। ब्रह्म ज्ञानी का यह गुनाओ, नानक जो पाव का सहज सुपाओ। ब्रह्म ज्ञानी निर्मल ते निर्मला, जैसे मैल ना लागे जला। ब्रह्म ज्ञानी के मन होए प्रगास, जैसे तर ऊपर आकाश। ब्रह्म ज्ञानी के मित्र सत्र समान, ब्रह्म ज्ञानी के नाही अभिमान। ब्रह्म ज्ञानी ऊंच ते ऊंचा, मन अपने है सब ते नीचा। ब्रह्म ज्ञानी सेजन पए, नानक जिन प्रभ आप करे।
ब्रह्म ज्ञानी सगल किरीना, आत्म रस ब्रह्म ज्ञान नीचीना, ब्रह्म ज्ञानी की सब ऊपर मया, ब्रह्म ज्ञानी ते कछ बुरा न पया, ब्रह्म ज्ञानी सदा समदर्शी, ब्रह्म ज्ञानी की दृष्ट अमृत बरसी, ब्रह्म ज्ञानी बंधन ते मुक्ता, ब्रह्म ज्ञानी की निर्मल जूता, ब्रह्म ज्ञानी का भोजन ज्ञान, नानक ब्रह्म ज्ञानी का ब्रह्म ध्यान, ब्रह्म ज्ञानी एक ऊपर आस, ब्रह्म ज्ञानी का नहीं विनाश, ब्रह्म ज्ञानी के गरीबी समाहा, ब्रह्म ज्ञानी पर उपकार उमाहा, ब्रह्म ज्ञानी के ना ही तंदा, ब्रह्म ज्ञानी ले तावत बंधा, ब्रह्म ज्ञानी क्या हुए सुफला, ब्रह्म ज्ञानी सुफल फला, ब्रह्म ज्ञानी संग सगल उदार, नानक ब्रह्म ज्ञानी जपै सगल संसार, ब्रह्म ज्ञानी कै एक रंग, ब्रह्म ज्ञानी कै बसै प्रभ संग, ब्रह्म ज्ञानी कै नाम आधार, ब्रह्म ज्ञानी कै नाम परवार, ब्रह्म ज्ञानी सदा सद जागत, ब्रह्म ज्ञानी अहम बुद्ध त्यागत, ब्रह्म ज्ञानी कै मन परमानंद, ब्रह्म ज्ञानी कै घर सदा आनंद, ब्रह्म ज्ञानी सुख सहज निवास, नानक ब्रह्म ज्ञानी का नहीं विनाश, ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म का बेता, ब्रह्म ज्ञानी एक संग हेता, ब्रह्म ज्ञानी कै होए अचिंत, ब्रह्म ज्ञानी का निर्मल मंत, ब्रह्म ज्ञानी जिस करे प्रभ आप, ब्रह्म ज्ञानी का बड़ प्रताप, ब्रह्म ज्ञानी का दर्श बड़ भागी पाइये, ब्रह्म ज्ञानी को बल बल जाइये, ब्रह्म ज्ञानी को खोजा महेश्वर, नानक ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर, ब्रह्म ज्ञानी की कीमत नाहे, ब्रह्म ज्ञानी कै सगल मन माहे, ब्रह्म ज्ञानी का कौन जाने भेद, ब्रह्म ज्ञानी कौ सदा आदेश, ब्रह्म ज्ञानी का कथा न जाय अध्याखर, ब्रह्म ज्ञानी सर्व का ठाकुर, ब्रह्म ज्ञानी की मित कौन बखाने, ब्रह्म ज्ञानी की गत ब्रह्म ज्ञानी जाने, ब्रह्म ज्ञानी का अंत न पार, नानक ब्रह्म ज्ञानी को सदा नमस्कार, ब्रह्म ज्ञानी सब सृष्टि का कर्ता, ब्रह्म ज्ञानी सद जीवे नहीं मरता, ब्रह्म ज्ञानी मुक्त जुक्त जी का दाता, ब्रह्म ज्ञानी पूर्ण पुरुष विधाता, ब्रह्म ज्ञानी अनाथ का नाथ, ब्रह्म ज्ञानी का सब ऊपर हाथ, ब्रह्म ज्ञानी का सगल आकार, ब्रह्म ज्ञानी आप निरंकार, ब्रह्म ज्ञानी की शोभा ब्रह्म ज्ञानी बनी, नानक ब्रह्म ज्ञानी सर्व का तनी, सलोक और तारे जो अंतर नाम, सर्व में पीख है भगवान, निमख निमख ठाकुर नमस्कार, नानक ओ अपरस सगल निस्तार, अष्टपदी मिथ्या नाही रसना परस, मन में प्रीत निरंजन दर्स, पात्र रूप न पीख है नेत्र, साध की टहल संत संग हेत, करण न सुने काहू की निंदा, सब ते जाने आपस को मंदा, गुर प्रसाद भिख्या पर हरे, मन की बासना मनते टरे, इंद्री चित पंच दोख ते रहत, नानक कोट मध्य को ऐसा अपरस, बैसनो सो जिस ऊपर सो प्रसन्न, बिसन की माया ते होए पिन, कर्म करत हुए निह कर्म, तिस बैसनु का निर्मल धर्म, काहू फल की इच्छा ने बांछे, केवल भगत कीर्तन संग्राचे, मन तन अंतर सिमरन गोपाल, सब ऊपर होवत कृपाल, आप त्रिड़े अवरह नाम जपावे, नानक हो बैसनो परम गत पावे, भगवती भगवंत भगत का रंग, सगल त्यागे दुष्ट का संग, मन ते बिन सह सगला परम, कर पूजे सगल पार ब्रह्म, साध संग पापा मल खोवे, तिस भगवती की मत उत्तम होवे, भगवंत की टहल करे नित नीत, मन तन अर्पै बिसन परीत, हर के चरण हृदय बसावे,
नानक ऐसा भगवती भगवंत को पावै। सो पंडित जो मन पर बुद्ध है, राम नाम आत्म है शुद्ध है, राम नाम सार रस पीवै, उस पंडित के उपदेश जग जीवै, हर की कथा हृदय बसावै। सो पंडित फिर जो नया वै, वेद प्राण सिमरत बूझै मूल, सुख में जाने असूल, चहु वर्णा को दे उपदेश, नानक उस पंडित को सदा आदेश, बीज मंत्र सर्व को ज्ञान, चहु वर्णा में जपै को नाम, जो जो जपै तिसकी गत होए, साध संग पावे जन कोय, कर कृपा अंतर और तारे, पस प्रेत मुग्ध पत्थर को तारे, सर्व रोग का औखद नाम, कल्याण रूप मंगल गुण गाम, काहू जुगत कितन पाइये धर्म, नानक तिस मिले जिस लिख्या तुर कर्म। जिसके मन पार ब्रह्म का निवास, तिसका नाम सत राम दास, आत्म राम तिस नदरी आया, दास दसंतन पाए तिन पाया, सदा निकट निकट हर जान, सो दास दरगह परवान, अपने दास को आप कृपा करे, तिस दास को सब सो जी परे, सगल संग आत्म उदास, ऐसी जुगत नानक रामदास, प्रभ की आज्ञा आत्म हितावे, जीवन मुक्त सो कहावे, तैसा हर्क तैसा उस सोग, सदा आनंद तै नहीं वियोग, तैसा स्वर्ण तैसी उस माटी, तैसा अमृत तैसी बिख खाटी, तैसा मान तैसा अभिमान, तैसा रंक तैसा राजान, जो वरताए साई जुगत, नानक ओ पुरख कहिए जीवन मुक्त, पार ब्रह्म के सगले ठाओ, जित जित घर राखै तैसा तिन नाओ, आपे करण करावण जोग, तब पावै सोई फन होग, पसर्यो आप हुए अनंत तरंग, लखे न जाहे पार ब्रह्म के रंग, जैसी मत दे तैसा प्रगास, पार ब्रह्म करता अविनाश, सदा सदा सदा दयाल, सिमर सिमर नानक पहे निहाल। श्लोक। उस्तत करह अनेक जन, अंत न पारा वार, नानक रचना प्रभ रची, बहुविध अनेक प्रकार। अष्टपदी। कई कोट होए पुजारी, कई कोट आचार व्यवहारी, कई कोट पै तीर्थवासी, कई कोट बन ब्रह्म उदासी, कई कोट वेद के श्रोते, कई कोट तपीसर होते, कई कोट आत्म ध्यान तारे, कई कोट कब काब विचारे, कई कोट नवतन नाम त्यावह, नानक करते का अंत न पावे, कई कोट पे अभिमानी, कई कोट अंध अज्ञानी, कई कोट कृपन कठोर, कई कोट अपिग आत्म निकोर, कई कोट पर दर्प को हिरे, कई कोट पर दुख न करे, कई कोट माया श्रम माहे, कई कोट परदेश परमाहे, जित जित लावो तित तित लगना, नानक करते की जाने करता रचना, कई कोट सिद्ध जति जोगी, कई कोट राजे रस भोगी, कई कोट पंखी सर्प उपाए, कई कोट पाथर बिरख निपजाए, कई कोट पवन पानी बैसंतर, कई कोट देश भूमंडल, कई कोट सस्यर सून क्षेत्र, कई कोट देवदानव इंद्र सिर छत्र, सगल समग्री अपने सूत तारे, नानक जिस जिस पावे तिस तिस निस्तारे, कई कोट राजस तामस सातक, कई कोट वेद पुराण सिमरत अर्शास्त्र, कई कोट किए रतन समुंद, कई कोट नाना प्रकार जंत, कई कोट किए चिर जीवे, कई कोट गिरी मेर स्वर्ण थीवे, कई कोट चख्य किन्न

ਨਾਨਕ ਆਪ ਅਲਿਪਤ ਰਹਿਆ ਭਰਪੂਰ, ਕਈ ਕੋਟ ਪਾਤਾਲ ਕੇ ਵਾਸੀ, ਕਈ ਕੋਟ ਨਰਕ ਸੁਰਗ ਨਿਵਾਸੀ, ਕਈ ਕੋਟ ਜਨਮ ਹੈ ਜੀਵ ਹੈ ਮਰਹਿ, ਕਈ ਕੋਟ ਬਹੁ ਜੋਨੀ ਫਿਰੈ, ਕਈ ਕੋਟ ਬੈਠਤ ਹੀ ਖਾਏ, ਕਈ ਕੋਟ ਘਾਲੇ ਥਕ ਪਾਹੇ, ਕਈ ਕੋਟ ਕੀਏ ਧਨਵੰਤ, ਕਈ ਕੋਟ ਮਾਇਆ ਮਹਿ ਚਿੰਤ, ਜਹ ਜਹ ਭਾਣਾ ਤਹ ਤਹ ਰਾਖੇ, ਨਾਨਕ ਸਭ ਕਿਛ ਪ੍ਰਭ ਕੇ ਹਾਥੇ, ਕਈ ਕੋਟ ਭਏ ਬੈਰਾਗੀ, ਰਾਮ ਨਾਮ ਸੰਗ ਤਿਨ ਲਿਵ ਲਾਗੀ, ਕਈ ਕੋਟ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਖੋਜੰਤੇ, ਆਤਮ ਮਹਿ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਲਹੰਤੇ, ਕਈ ਕੋਟ ਦਰਸ਼ਨ ਪ੍ਰਭ ਪਿਆਸ, ਤਿਨ ਕਉ ਮਿਲਿਓ ਪ੍ਰਭ ਅਵਿਨਾਸ, ਕਈ ਕੋਟ ਮੰਗ ਹੈ ਸਤਸੰਗ, ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਤਿਨ ਲਾਗਾ ਰੰਗ, ਜਿਨ ਕੋ ਹੋਏ ਆਪ ਸੋ ਪ੍ਰਸੰਨ, ਨਾਨਕ ਤੇ ਜਨ ਸਦਾ ਧਨ ਧਨ, ਕਈ ਕੋਟ ਖਾਣੀ ਅਰ ਖੰਡ, ਕਈ ਕੋਟ ਆਕਾਸ ਬ੍ਰਹਮੰਡ, ਕਈ ਕੋਟ ਹੋਏ ਅਵਤਾਰ, ਕਈ ਜੁਗਤ ਕੀਨੋ ਵਿਸਥਾਰ, ਕਈ ਬਾਰ ਪਸਰੂ ਪਾਸਾਰ, ਸਦਾ ਸਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਅੰਕਾਰ, ਕਈ ਕੋਟ ਕੀਨੇ ਬਹੁ ਭਾਤ, ਪ੍ਰਭ ਤੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਭ ਮਾਹੇ ਸਮਾਤ, ਤਾ ਕਾ ਅੰਤ ਨ ਜਾਣੈ ਕੋਈ, ਆਪੇ ਆਪ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਸੋਏ, ਕਈ ਕੋਟ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਕੇ ਦਾਸ, ਤਿਨ ਹੋਵਤ ਆਤਮ ਪ੍ਰਗਾਸ, ਕਈ ਕੋਟ ਤਤ ਕੇ ਬੇਤੇ, ਸਦਾ ਨਿਹਾਰੈ ਕੋ ਨੇਤਰੇ, ਕਈ ਕੋਟ ਨਾਮ ਰਸ ਪੀਵੈ, ਅਮਰ ਭਏ ਸਦ ਸਦ ਹੀ ਜੀਵੈ, ਕਈ ਕੋਟ ਨਾਮ ਗੁਣ ਗਾਵੈ, ਆਤਮ ਰਸ ਸੁਖ ਸਹਿਜ ਸਮਾਵੈ, ਆਪਣੇ ਜਨ ਕੋ ਸਾਸ ਸਾਸ ਸਮਾਰੇ, ਨਾਨਕ ਹੋਏ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੇ ਪਿਆਰੇ ਸਲੋਕ, ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਭ ਏਕ ਹੈ ਦੂਸਰ ਨਾਹੀ ਕੋਏ, ਨਾਨਕ ਤਿਸ ਬਲਿਹਾਰਣੈ ਚਲ ਥਲ ਮਹੀਲ ਸੋਏ। ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਕਰਨ ਕਰਾਵਣ ਕਰਣੈ ਜੋਗ, ਜੋ ਤਿਸ ਭਾਵੈ ਸੋਈ ਹੋਗ, ਖਿਨ ਮੈਂ ਥਾਪ ਉਥਾਪਣ ਹਾਰਾ, ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਕਿਛ ਪਾਰਾ ਵਾਰਾ, ਹੁਕਮੇ ਧਾਰ ਅਧਰ ਰਹਾਵੈ, ਹੁਕਮੇ ਉਪਜੈ ਹੁਕਮ ਸਮਾਵੈ, ਹੁਕਮੇ ਊਚ ਨੀਚ ਵਿਵਹਾਰ, ਹੁਕਮੇ ਅਨਕ ਰੰਗ ਪ੍ਰਕਾਰ, ਕਰ ਕਰ ਦੇਖੈ ਆਪਣੀ ਵਡਿਆਈ, ਨਾਨਕ ਸਭ ਮਹਿ ਰਿਹਾ ਸਮਾਈ, ਪ੍ਰਭ ਭਾਵੈ ਮਾਨਕ ਗਤ ਪਾਵੈ, ਪ੍ਰਭ ਭਾਵੈ ਤਾਂ ਪਾਥਰ ਤਰਾਵੈ, ਪ੍ਰਭ ਭਾਵੈ ਬਿਨ ਸਾਸ ਤੇ ਰਾਖੈ, ਪ੍ਰਭ ਭਾਵੈ ਤਾਂ ਹਰ ਗੁਣ ਭਾਖੈ, ਪ੍ਰਭ ਭਾਵੈ ਤਾਂ ਪਤਤ ਉਧਾਰੈ, ਆਪ ਕਰੈ ਆਪਨ ਵਿਚਾਰੈ, ਦੁਹਾਂ ਸਿਰਿਆ ਕਾ ਆਪ ਸੁਆਮੀ, ਖੇਲੈ ਬਿਗਸੈ ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ, ਜੋ ਭਾਵੈ ਸੋ ਕਾਰ ਕਰਾਵੈ, ਨਾਨਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਅਵਰ ਨ ਆਵੈ, ਕਹੁ ਮਾਨਕ ਤੇ ਕਿਆ ਹੋਇ ਆਵੈ, ਜੋ ਤਿਸ ਭਾਵੈ ਸੋਈ ਕਰਾਵੈ, ਇਸ ਕੈ ਹਾਥ ਹੋਏ ਤਾਂ ਸਭ ਕਿਛ ਲੇ, ਜੋ ਤਿਸ ਭਾਵੈ ਸੋਈ ਕਰੇ, ਅਨ ਜਾਣਤ ਬਿਖਿਆ ਮਹਿ ਰਚੈ, ਜੇ ਜਾਣਤ ਆਪਨ ਆਪ ਬਚੈ, ਭਰਮੇ ਭੂਲਾ ਦਹਿ ਦਿਸ ਧਾਵੈ, ਨਿਮਖ ਮਹਾਈ ਚਾਰ ਘੁੰਟ ਫਿਰ ਆਵੈ, ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਜਿਸ ਆਪਣੀ ਭਗਤ ਦੇ, ਨਾਨਕ ਤੇ ਜਨ ਨਾਮ ਮਿਲੇ, ਖਿਨ ਮੈਂ ਨੀਚ ਕੀਟ ਕਉ ਰਾਜ, ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ, ਜਾ ਕਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਠੂ ਨ ਆਵੈ, ਤਿਸ ਤਤਕਾਲ ਦਹਿ ਦਿਸ ਪ੍ਰਗਟਾਵੈ, ਜਾ ਕੋ ਆਪਣੀ ਕਰੈ ਬਖਸ਼ੀਸ਼, ਤਾ ਕਾ ਲੇਖਾ ਨ ਗਨੈ ਜਗਦੀਸ਼, ਜਿਉ ਪਿੰਡ ਸਭ ਤਿਸ ਕੀ ਰਾਸ, ਘੱਟ ਘੱਟ ਪੂਰਨ ਬ੍ਰਹਮ ਪ੍ਰਗਾਸ, ਆਪਣੀ ਬਣਤ ਆਪ ਬਣਾਈ, ਨਾਨਕ ਜੀਵੈ ਦੇਖ ਵਡਾਈ, ਇਸ ਕਾ ਬਲ ਨਾਹੀ ਇਸ ਹਾਥ, ਕਰਨ ਕਰਾਵਣ ਸਰਬ ਕੋ ਨਾਥ, ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਬਪੁਰਾ ਜੀਓ, ਜੋ ਤਿਸ ਭਾਵੈ ਸੋਈ ਪੁਨ ਥੀਓ, ਕਭੂ ਊਚ ਨੀਚ ਮਹਿ ਬਸੈ, ਕਭੂ ਸੋਗ ਹਰਖ ਰੰਗ ਹਸੈ, ਕਭੂ ਨਿੰਦ ਚੰਦ ਵਿਵਹਾਰ, ਕਭੂ ਊਬ ਆਕਾਸ ਪਿਆਲ, ਕਭੂ ਬੇਤਾ ਬ੍ਰਹਮ ਵਿਚਾਰ, ਨਾਨਕ ਆਪ ਮਿਲਾਵਣ ਹਾਰ, ਕਭੂ ਨਿਰਤ ਕਰੈ ਬਹੁ ਭਾਤ, ਕਭੂ ਸੋਏ ਰਹਿ ਦਿਨ ਰਾਤ, ਕਭੂ ਮਹਾਕ੍ਰੋਧ ਬਿਕਰਾਲ, ਕਭੂ ਸਰਬ ਕੀ ਹੋ ਤਰਵਾਲ, ਕਭੂ ਹੋਏ ਵਹਿ ਬੜ ਰਾਜਾ, ਕਭੂ ਭਿਖਾਰੀ ਨੀਚ ਕਾ ਸਾਜਾ, ਕਭੂ ਅਪਕੀਰਤ ਮਹਿ ਆਵੈ, ਕਭੂ ਭਲਾ ਭਲਾ ਕਹਾਵੈ, ਜਿਉ ਪ੍ਰਭ ਰਾਖੈ ਤਿਵਹੀ ਰਹਿ, ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨਾਨਕ ਸਚ ਕਹੈ,
कभू हुए पंडित करे बख्यान, कभू मोन तारी लावे ध्यान, कभू तट तीर्थ स्नान, कभू सिद्ध साधक मुख ज्ञान, कभू कीट हस पतंग हुए जिया, आनक जोन पर मैं परमिया, नाना रूप जो स्वांगी दिखावे, जो प्रभु पावे तिवे नचावे, जो तिस पावे सोई हुए, नानक दूजा अवर न कोई, कभू साध संगत हो पावे, उस स्थान ते बहुर न आवे, अंतर होए ज्ञान प्रगास, उस स्थान का नहीं विनाश, मन कन नाम रते एक रंग, सदा बसह पार ब्रह्म के संग, ज्यो जल में जल आए खटाना, त्यों ज्योति संग ज्योत समाना, मिट गए गवन पाए विश्राम, नानक प्रभ कै सद कुर्बान। सलोक सुखी बसै मसकीनिया आप निवार तले, बड़े बड़े अहंकारिया नानक गर्भ गले, अष्टपदी जिसके अंतराज विमान, सो नरक पाती होवत स्वान, जो जान मैं जो बनवंत, सो होवत बिस्टा का जंत, आपस को कर्मवंत कहावे, जन्म मरै बहुजोन प्रमावे, तन भूम का जो करै गुमान, सो मूर्ख अंधा अज्ञान, कर कृपा जिसके हृदय गरीबी बसावे, नानक इहां मुक्त आगे सुख पावे, तनवंता होय कर गर्भावे, तृण समान कछ संग न जावे, बहु लश्कर मानक ऊपर करे आस, पल भीतर ताका होए विनाश, सब ते आप जाने बलवंत, खिन में होए जाए पसमंत, किसे न बदे आप अहंकारी, धर्म राय तिस करे खुआरी, गुर प्रसाद जाका मिटा अभिमान, सो जन नानक दरगह परवान, कोट कर्म करै हो तारे, श्रम पावे सगले बिरथारे, अनक तपस्या करे अहंकार, नरक सुर्ग फिर अवतार, अनक जतन करा तुम नहीं द्रवे, हर दरगह कहो कैसे गवे, आपस को जो भला कहावे, तिसे भलाई निकट न आवे, सर्व की रेन जा का मन होए, कहो नानक ताकि निर्मल सोए, जब लग जाने मुझते सुख होए, जब लग जाने मुझते कछ होए, तब इसको सुख ना ही कोए, जब ये जाने मैं किस करता, तब लग गर्भ जोन में फिरता, जब तारे को बैरी मीत, तब लग नहीं चलना ही चीत, जब लग मोह मगन संग माए, तब लग धर्म राय देश जाए, प्रभ कृपा ते बंधन टूटे, गुर प्रसाद नानक हो छूटे, सहस खटे लख को उठतावे, तृप्त न आवे माया पाछे पावे, अनक भोग भिख्या के करे, न तृप्तावे खप खप मरे, बिना संतोख नहीं कौराजै, सुपन मनोरथ बिरथे सब काजै, नाम रंग सर्व सुख होए, बड़भागी किसे प्राप्त होए, करण करावण आपे आप, सदा सदा नानक हर जाप, करण करावण करने हार, इसके हाथ कहां विचार, जैसे दृष्ट करे तैसा होए, आपे आप आप प्रभ सोए, जो किछ कीनो सो अपने रंग, सब ते दूर सबहू के संग, बुझे देखे करे विवेक, अपह एक अपह अनेक, मरे न बिनसे आवे न जाए, नानक सद ही रिहा समाए, आप उपदेश है समझे आप, आपे रचिया सब के साथ, आप कीनो आपन विस्थार, सब कछ उसका ओह करने हार, उसते पिन कहो हो किछ होए, थान थनंतर एक कैस होए, अपने चलत आप करने हार, कौतुक करे रंग आपार, मन में आप मन अपने माहे, नानक कीमत कहन न जाए, सत सत सत प्रभ स्वामी, गुर प्रसाद किने वख्यानी, सच सच सच सब कीना, कोट मधे किने बिरला चीना, भला भला भला तेरा रूप, अत सुंदर अपार अनूप, निर्मल निर्मल निर्मल तेरी बाणी, घट घट सुनी सरण बख्याणी, पवित्र पवित्र पवित्र पुनीत, नाम जपै नानक मन प्रीत। श्लोक संत शरण जो जन परै, सो जन उदरण हार, संत की निंदा नानका
बहुर बहुरे अवतार अष्टपदी। संत के दुखन आर जा कटे, संत के दुखन जमते नहीं छुटे, संत के दुखन सुख सब जाए, संत के दुखन नरक में पाए, संत के दुखन मत होए मलीन, संत के दुखन शोभा तेहीन, संत के हत्ते को रखे न कोए, संत के दुखन थान प्रष्ट होए, संत कृपाल कृपा जी करे, नानक संत संग निंदक पीतरे, संत के दुखन ते मुख पवे, संतन के दुखन काग ज्यों लवे, संतन के दुखन सर्प जोन पाए, संत के दुखन त्रिग्ध जोन किरमाए, संतन के दुखन तृष्णा मह जले, संत के दुखन सब को छले, संत के दुखन तेज सब जाए, संत के दुखन नीच निचाए, संत दुखी का थाव को नाही, नानक संत पावे ता ओई पीगत पाहे, संत का निंदक मां अतताई, संत का निंदक खेन टिकन न पाई, संत का निंदक महा हतियारा, संत का निंदक परमेश्वर मारा, संत का निंदक राज तेहीन, संत का निंदक दुखिया अर्दीन, संत के निंदक को सर्ब रोग, संत के निंदक को सदा बिजोग, संत की निंदा दोख में दोख, नानक संत पावे ता उसका पी होए मोख, संत का दुखी सदा अपवित, संत का दुखी किसे का नहीं मित, संत के दुखी को डान लागे, संत के दुखी को सब त्यागे, संत का दुखी महा अहंकारी, संत का दुखी सदा बिकारी, संत का दुखी जन्म मरे, संत के दुख न सुखते टरे, संत के दुखी को ना ही ठाओ, नानक संत पावे ता ले मिलाए, संत का दुखी अद बीच ते टूटे, संत का दुखी किते काज न पहुंचे, संत के दुखी को उद्यान परमाइये, संत का दुखी उज्जड़ पाइये, संत का दुखी अंतर ते थोथा, ज्यों सांस बिना मृतक की लोथा, संत के दुखी की जड़ किछ नाही, अपन बीज अपे ही खाहे, संत के दुखी को अवर ना रखन हार, नानक संत पावे ता ले उबार, संत का दुखी इयों बिललाए, ज्यो जल बिहून मछली तड़फड़ाए, संत का दुखी भूखा नहीं राजे, ज्यो पाव इंधन नहीं त्रापे, संत का दुखी छुटे अकेला, ज्यो बुआर तिलखे तुम्हें दुहेला, संत का दुखी धर्म ते रहत, संत का दुखी सद मिथ्या कहत, किरत निंदक का तुर ही पया, नानक जो तिस पावे सोई थिया, संत का दुखी बिगड़ रूप होए जाए, संत के दुखी को दरगह मिले सजाए, संत का दुखी सदा सहकाई है, संत का दुखी न मरे न जीवाई है, संत के दुखी की पूजे नयासा, संत का दुखी उठ चले निराशा, संत के दुख न तृष्टै कोई, जैसा पावे तैसा कोई होए, पिया कीर्तना मिटै कोई, नानक जाने सच्चा सोए, सब घट तिसके ओ करने हार, सदा सदा तिसको नमस्कार, प्रभ की उस्तत करो दिन रात, तिसे त्यावो सास गिरास, सब कछ वर्ते तिसका किया, जैसा करे तैसा को थिया, अपना खेल आप करने हार, दूसर कौन कह विचार, जिसनो कृपा करे तिस आपन नाम दे, बड़भागी नानक जन से इस लोक, तजो सियाण पसुर जनो, सिमरो हर हर राय, एक आस हर मन रखो, नानक दुख परम पौ जाए। अष्टपदी। मानक की टेक बिरथी सब जान, दीवन को एक है भगवान, जिसके दिए रहे अगाए, बहुर न तृष्णा लागे आए, मारे राख है एको आप, मानक कह किस नाही हाथ, तिसका हुक्म बूझ सुख होए, तिसका नाम रख कंठ परोए, सिमर सिमर सिमर प्रभ सोए, नानक बिघन ना लागे कोए, उस्तत मन में कर निरंकार, कर मन मेरे सत व्यवहार, निर्मल रसना अमृत पियो, सदा सुहिला कर लह जियो, नैनो बेख ठाकुर का रंग, साध संग बिन सह सब संग,
चरण चलो मार्ग गोबिंद, मिटह पाप जपिए हर बिंद, कर हर कर्म शरण हर कथा, हर दरगह नानक उज्जल मथा, बड़भागी ते जन जग माहे, सदा सदा हर के गुण गाहे, राम नाम जो करह विचार, से धनवंत गनी संसार, मन तन मुख बोले हर मुखी, सदा सदा जानो ते सुखी, एको एक एक पछाने, इत उत की ओ सोझी जाने, नाम संग जिसका मन मान्या, नानक तिन्हें निरंजन जान्या, गुर प्रसाद अपन आप सुझै, तिसकी जानो तृष्णा बुझै, साध संग हर हर जस कहत, सर्ब रोग ते ओ हर जन रहत, आन देन कीर्तन केवल बख्यान, गृहस्थ में सोई निर्वाण, एक ऊपर जिस जन की आसा, तिसकी कटिए जम की भाषा, पार ब्रह्म की जिस मन भूख, नानक तिसे न लागे दुख, जिसको हर प्रभ मन चित आवे, सो संत सुहेला नहीं डुलावे, जिस प्रभ अपना कृपा करे, सो सेवक कहो किससे डरे, जैसा सा तैसा दृष्टाया, अपने कार्य में आप समाया, सोधत सोधत सोधत सिज्या, गुर प्रसाद तत् सब बुझ्या, जब देखो तब सब किछ मूल, नानक सो सूखम सोई अस्थूल, नह किछ जन्मे नह किछ मरे, अपन चलत आप ही करे, आवन जावन दृष्ट अंदृष्ट, आज्ञाकारी तारी सब श्रेष्ठ, आपे आप सगल मह आप, अनक जोगत रच थाप उथाप, अविनाशी नाही किछ खंड, धारण धार रिहो ब्रह्मंड, अलख अपेव पुरख प्रताप, आप जपाए ता नानक जाप, जिन प्रभ जाता सो शोभा सो शोभावंत, जिन प्रभ जाता सो शोभावंत, सगल संसार उदरै तिन मंत, प्रभ के सेवक सगल उदारण, प्रभ के सेवक दुख बिसारण, आपे मेल ले कृपाल, गुर का शब्द जप पै निहाल, उनकी सेवा सोई लागे, जिसनु कृपा करै बड़भागे, नाम जपत पावै विश्राम, नानक तिन पुरख को उत्तम कर मान, जो किछ करै सो प्रभ के रंग, सदा सदा बसै हर संग, सह सुपाए होवे सो होए, करण हार पछाण सोए, प्रभ का किया जन मीठ लगाना, जैसा सा तैसा दृष्टाना, जिसते उपजे तिस महे समाई, ओए सुख निदान उनहु बने आए, आपस को आप दीनो मान, नानक प्रभ जने को जान, सलोक सर्ब कला भरपूर प्रभ, बिरथा जानन हार, जाके सिमरन उद्धरिये, नानक तिस बलहार, अष्टपदी टूटी कण हार गोपाल।

कछ तिसका दिया दरबै। अत सूरा जे कहु कहावै, प्रभ की कला बिना कहता वै। जे को हुए बह दातार, तिस देन हार जाने गावार। जिस गुर प्रसाद टूटै हो रोग, नानक सोजन सदा अरोग। ज्यों मंदर को थम मैं थम्मन, त्यों गुर का शब्द मने अस्थम्मन। ज्यों पाखाण नाव चढ़ तरै, प्राणी गुर चरण लग्न निस्तरै। ज्यों अंधकार दीपक परगास, गुर दर्शन देख मन हुए विगास। ज्यों महा उद्यान मह मार्ग पावै, त्यों साधु संग मिल जोत प्रगटावै। तिन संतन की बाछो तूर, नानक की हर लोचा पूर। मन मूर्ख काहे बिललाइयै, पूर्व लिखे का लिखिया पाइयै। दुख सुख प्रभ देवन हार, अवर त्याग तुंत सह चितार। जो कछ करै सोई सुख मान, भूला काहे फिरै अजान। कौन बस्त आई तेरा संग, लपट रिहो रस लोभी पतंग। राम नाम जप हिरदे माहे, नानक पत सेती कर जाहे। जिस वखर को लैण तू आया, राम नाम संतन कर पाया। तज अभिमान लेहो मन मोल, राम नाम हिरदे महतोल। लाद खेप संतै संगचाल, अवर त्याग बिख्या जंजाल। धन धन कह सब कोए, मुख उजल हर दरगह सोए। एहो अपार विरला वपार है, नानक तां कह सद बलिहार है। चरण साध के तोए तोए पियो, अर्प साध को अपना जियो। साध की धूर करो इशनान, साधु पर जाइए कुर्बान। साध सेवा वडभागी पाइए, साध संघर कीर्तन गाइए। अनक बिघन ते साधु राखै, हर गुण गाए अमृत रस चाखै। ओट गही संतह दरियाया, सर्ब सुख नानक तह पाया। मृतक को जीवालन हार, भूखे को देवत आधार। सर्व निदान जाकी दृष्टि माहे, पूर्व लिखे का दहना पाहे। सब किछ तिसका ओह करना जोग, तिस बिन दूसर हुआ न होग। जप जन सदा सदा दिन रहनी, सब ते ऊच निर्मल एह करनी। कर कृपा जिस को नाम दिया, नानक सो जन निर्मल थिया। जाके मन गुर की प्रतीत, तिस जन आवै हर प्रभ जीत। भगत भगत सुनिए तहलोए, जाके हृदय एक होए। सच करनी सचता की रहत, सच हृदय सतमुख कहत। साची दृष्ट साचा आकार, सच वर्तै साचा पासार। पार ब्रह्म जिन सच कर जाता, नानक सो जन सच समाता। श्लोक रूप न रेख न रंग किछ, त्रैगुण ते प्रभ भिन्न। जिसै बुझाए नानका, जिस होवै सो प्रसन्न। अष्टपदी अवनासी प्रभ मन में राख, मानक की तू प्रेत त्याग। जिसते परै नाही किछ कोए, सर्व निरंतर एको सोए। आपे बिना आपे दाना, गहर गंभीर गहिर सुजाना। पार ब्रह्म परमेश्वर गोबिंद, कृपा निधान दयाल बख्शंद। साध तेरे की चरणी पाओ, नानक कै मन इहो नराओ। मनसा पूर्ण शरणा जोग, जो कर पाया सोई होग। हरण भरण जाका नेत्र फोर, तिसका मंत्र न जाने होर। आनंद रूप मंगल सद जाकै, सर्ब थोक सुनिए करता कै। राज महराज जोग मह जोगी, तप मह तपी सरगृस मह भोगी। त्याए त्याए भगत है सुख पाया, नानक तिस पुरख का किन अंत न पाया। जाकी लीला कीमत नाहे, सगल देव हारे वगाहे। पिता का जन्म के जाने पूत, सगल परोई अपने सूत। सुमत ज्ञान ध्यान जन दे, जनदास नाम त्या भैसे। ते गुण में जाको परमाए, जन्म मरे फिर आवे जाए। ऊच नीच तिसके स्थान, जैसा जनावै तैसा नानक जान। नाना रूप नाना जाके रंग, नाना भेख करै करंग। नाना बिद किनो विस्तार, प्रभ अविनाशी एक अंकार। नाना चलत करे खिन माहे, पूर रहो पूर्ण सब ठाए। नाना बिद कर बंत बनाई, अपनी कीमत आपे पाई। सब घट तिसके सब तिसके ठाओ, जप जप जीवै नानक हर नाओ। नाम के तारे सगले जंत, नाम के तारे खंड ब्रह्मंड। नाम के तारे सिमरत वेद पुराण, नाम के तारे सुनन ज्ञान ध्यान। नाम के तारे आगास पाताल, नाम के तारे सगल आकार। नाम के तारे पुरिय सब पवन, नाम के संग उदरे सुन सरण। कर कृपा जिस अपने नाम लाए, नानक चौथे पद में सो जनगत पाए। रूप सत जाका सत स्थान, पुरख सत केवल प्रधान। करतूत सत सत जाकी बाणी,

फिर जा पृष्ठपदि। जब अकार एक आसन दृष्ट देता पापम तब कहते होता, जब धारी अपन सुन समाद तब बैर विरोध किस संग कमात। जब इसका वर्ण चिहन न जापत तब हरक सोग कहो किसे व्यापत। जब अपने आप आप पार ब्रह्म तब मोह कहां किस होवत परम। आपन खेल आप वर्तीजा नानक करना हारना दूजा। जब होवत प्रभ केवल थनी तब बंद मोहित कहो किस को कनी। जब एक हर गम पार तब नरक सुर्ग कहो कौन अवतार। जब निर्गुण प्रभ सह सो पाए तब शिव सकत कहो के तठाई। जब आप है आप अपनी जोत तर तब कवन निडर कवन कत डर। आपन जल प्याप करना हार नानक ठाकुर गम पार। अविनाशी सुख अपने आसन तह जन्म मरण को कहा विनाशन। जब पूर्ण करता प्रभ सोए तब जम की त्रास कहो किस होए। जब अवगत अगोचर प्रभ एका तब चित्रगुप्त किस पूछत लेखा। जब नाथ नंजन गोचर का दे तब कौन छुटे कौन बंधन बांधे। अपने आप ही उचर जा नानक आपन रूप आप ही उपर जा। जह निर्मल पुरख पुरख पत होता तह बिन मैल कहो क्या तोता। जह निरंजन निरंकार निर्वाण तह कौन को मान कौन अभमान। जह स्वरूप केवल जगदीश तह शल शिदर लगत कहो कीस। जह ज्योत स्वरूपी ज्योत संग समावे तह किसे भूख कब हम त्रिपतावे। करण करावन करना हार नानक करते का नाहे सोमार।

कहाँ कहु चीन। जब अपने आप आपे और धार है तो सगन अप सगन कहाँ विचार है। जह अपने ऊंचे अपने आप नेरा तै कौन ठाकुर कौन कही है चेरा। बिस्मन बिस्म रहे बिस्माद नानक अपनी गत जानो आप। जय शाल शेद भेद समाया वहां किसै व्याप्त माया। आप सको आपै आदेश तेह गुण का नहीं प्रवेश। जह एक भगवंता तै कौन चिंत किस लागै चिंता। जह आपन आप आप तियारा तै कौन कथै कौन सुनै हारा। महो ब्यंत उठते उचा नानक आप सको आपै पहुचा। जह आप रचो पर पंच कार तेह गुण में किनो विस्थार। पाप पुनतै पई कहावत को नरक को सुरग वंशावत। आल जाल माया जंजाल होमै मोह परम पै पार। दुख सुख मान अपमान अनक प्रकार की ओ बखियान। आपन खेल आप कर देख खेल संकोचै तो नानक एक है। जय आपगत भगत है आप जय पसरै पसार संत प्रताप। दोहों पाख काया पै धनी उनकी शोभा उन्हो बनी। आपै कौत करे अंद चोज आपै रस भोगन निर्जोग। जिस भावै तस आपन नहीं लावे जिस भावै तस खेल खिलावे। बेशुमार था अगन त्यो तोले ज्यो बुलावो त्यो नानक दास बोले सलोक। जी जंत के ठाकुर आपे वर्तनहार नानक को पसरिया दूजा कह दृष्टार। अष्टपति आप कथे आप सुनने हार आपै एक आप विस्तार। जां तिस भावै तां श्रेष्ठ उपाय अपना पण ले समाए। तुम ते पिन नहीं किछ होए आपन सोत सब जगत परोए। जाको प्रभ जीओ आप बुझाए सच नाम सोई जन पाए। सो समदर सी तत् का बेता नानक सगल श्रेष्ठ का जेता। जी जंत्र सब ताक हाथ दीन दयाल अनाथ को नाथ। जिस राखै तिस कोई न मारे सो मुआ जिस मनो बिसारै। तिस ताजावर कहां को जाए सब सरेक निरंजन राय। जी की जोत जाकै सब हाथ अंतर बाहर जानो साथ। गुण दान बेअंत पार नानक दास सदा बलहार। पूर्ण पूर रहे दयाल सब उपर होवत कृपाल। अपने करतब जाने आप अंतर जामी रहो व्याप। परत पालै जीन बहु भांत जो जो रचो तिसै त्यात। जिस पावै तिस लै मिलाए भगत करै हर के गुण गाए। मन अंतर विश्वास कर मानिया नानक करण हार नानक एक जानिया। जन लागा हारे कहना है तिसकी आसना बिरथी जाए।

निरंकार बंधन तोर पै निर्वैर अन दिन पूजै गुर के पैर एह लोक सुखिए पर लोक सोहेले नानक हर प्रभा पह मेले साध संग मिल करो आनंद गुण गावो परमानंद राम नाम तद करो विचार दुर्लभ देह का करो उदार अमृत वचन हर के गुण गाओ प्राण तरण गह सुहाओ आड़ पैर प्रापेखो नेरा मिटै ज्ञान बिन सह अंधेरा सुन परेस हृदय बसाओ मन इच्छे नानक फल पावो हालत पलत दो लिहो सुवार राम नाम अंतर और तहार पूरे गुर की पूरी दिखिया जिस मन बसै ते साच परीखिया मन प्रणाम जपो लिवलाए दुख दर्द मन के पौ जाए सच व्यापार करो व्यापारी दरगह निवह खेर तुम्हारी एक आटे करखो मन माहे नानक बहुर न आवे जाहे तिस्ते दूर कहाँ को जाय उबरै राखन हार ते आए निरभाओ जपै सगल भाओ मिटै प्रभु कृपा ते प्राणी छुटै जिस प्रभ राखै तुस नाही दुख नाम जपत मन होवत सुख चिंता जाए मिटै अहंकार तिस जन को कोई न पहुंचन हार सिर उपर ठाडा गुरसूरा नानक ताके कार्ज पूरा मत पूरी अमृत जाकी दृष्ट दर्शन फेख तो दृत श्रिष्ट चरण कमल जाके अनूप सफल दर्शन सुंदर हर रूप तन सेवा सेवक परवान अंतर जामी पुरख प्रधान जिस

नानक पूरा पाया पूरे के गुण गाओ। अष्टपदी पूरे गुर का सुन उपदेश पार ब्राह्मणिट कर पेख सास सास सिमरो गोविंद मन अंतर की उतरा चिंद आस नित त्याग गोत्रांग संत जना की तोर मन मंग आप छोड़ बेनती करो साध संगन सागर करो हर धन के पर ले भंडार नानक गुरपुरे नमस्कार। खेम कुशल सहज आनंद साध संग भय परमानंद नरक निवार उधारो जियो गुण गोविंद अमृत रस पियो। चिर चितवो नारायण एक एक रूप जाके रंग अनेक गोपाल दमोदर दीन दयाल दुख भंजन पूर्ण कृपाल सिमर सिमर नाम बारंबार नानक जी का है धार। उत्तम सलोक साध के बचन अमली कलाल हे रतन सुनत कमावत हो तो धार आप तरह लोग कहने सुतार सफल जीवन सफलता का संग जा कै मन लागा हर रंग जय जय शब्द नाहद वाजय सुन सुन आनंद करे प्रभ गाजय। प्रगटे गोपाल महांत कै माथे नानक उदरे तिन कै साथे शरण जोग सुन सरणी आए कर कृपा प्रभ आप मिलाए। मिट गए बैर पे सबरेन अमृत नान साध संगलैन सो प्रसन्न पे गुरुदेव पूर्ण होई सेवक की सेव आल जंजाल बिकारते रहते राम नाम सुन रसना कहते कर प्रसाद दया प्रवतारी नानक निभीखे पहमारी प्रभ की उत्त करो संत मीत सावधान एकाग्र चीत सुखमनि सहज गोबिंद गुण नाम जिस मन बसै सोत निधान सर्व इच्छा ताकि पूर्ण होए प्रधान पुरख प्रगट सब लोए सब ते ओज पाए स्थान बौर न होवे आव निजान हर तन खाड़ चलै जन सोए नानक जिसै प्राप्त होए खेम शांत रिद्ध नम निद बुद्ध ज्ञान सर्व तय सिद्ध विद्या तप योग प्रभ ध्यान ज्ञान श्रेष्ठ उत्तम स्नान चार पदार्थ कमल प्रकाश सब कै मद सगल के उदास सुंदर चतुर तत् का बेता समंदर सी एक दृष्टिता ए फल तिस जन कै मुख पने गुरु नानक नाम बचन मन सुने। एह निदान जपै मन कोय सब जुग मैता की गत होए गुण गोबिंद नाम धुन बाणी सिमरत शास्त्र भेद बखाणी सगल मतांत केवल हर नाम गोविंद भगत कै मन विश्राम कोट पराध साध संग मिटै संत कृपा ते जन ते छुटै जा कै मस्तक करम प्रभ पाए साध शरण नानक ते आए। जिस मन बसै सुनै लाए प्रीत तिस जन आवै हर प्रभ जीत जन्म मरण ताका दुख निवार दुलभ देह तत्काल उदार निर्मल शोभा अमृता की बानी एक नाम मन माहे समानी दुख रोग बिन से पै परम साध नाम निर्मलता के कर्म सब ते उच्चता की शोभा बनी नानके गुण नाम सुखमनी।

राम सुखमनि। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सतनाम वाहिगुरु जी।

रंगी रंगी भांति कर कर जिनसी माया जिन उपाई कर कर वेखै कीता अपना जिव तिस दी वडियाई जो तिस भावै सोई कर सी हुक्म ना करना जाई सो पातशाह शाह पात साहिब नानक रहन रजाई मुंदा संतोख सरम पत झोली ध्यान कि करह बेभूत खिंथा काल कुआरी काया जुगत डंडा परतीत आई पंथी सगल जमाती मन जीतै जग जीत आदेश दसै आदेश आदि अनिल अनाद अनाहत जुग जुग एको वेश भुगत गयान दया भंडारण घट घट वाजै नाद आप नाथ नाथी सब जाति रेत से देवरा साध संजोग विजोग देवकार चलावै लिखे आवै भाग आदेश दसै आदेश आद अनिल अनाद अनाहत जुग जुग एको वेश एक माई जुगत व्याई तिन चेले प्रवान एक संसारी एक भंडारी एक लाए दीवान जिव तुह पावै तिवै चलावै जेव होवै प्रमाण ओ वेखै ओना नदर ना आवै बहुता ए विडान आदेश तिसै आदेश आद अनिल अनाद अनाहत जुग जुग एको वेश आसन लोए लोए भंडार जो किश पाए सो एका वार कर कर वेखै सृजनहार नानक सच्चे की साची कार आदेश तिसै आदेश आद अनिल अनाद अनाहत जुग जुग एको वेश एक दूजी पौ लख होवे लख होवे लख वीस लख लख गेड़ा आखी है एक नाम जगदीश ये त्रापद पौड़िया चढ़िया होए इक्कीस सुन गल्ला आकाश की कीटा आई रीस नानक नदरी पाई है कूड़ी कूड़ै ठीस आखण जोर चुपैन है जोर जोर ना मंगण देण ना जोर जोर ना जीवन मरण नह जोर जोर ना राज माल मनसोर जोर

नानक उत्तम नीच ना कोय। रापी रुती थिती वार पवन पाणी अग्नि पाताल तिस विच धरती थाप रखी धर्मसाल तिस विच जीवत के रंग तिनके नाम अनेक अनंत करमे करमे होए विचार सच्चा आप सच्चा दरबार तिथै सोहन पंच प्रवान नदरी करम पवै निशान काचब काई उथै पाए नानक गया जा पै जाए धर्म खंड का एहो धर्म ज्ञान खंड का आखो कर्म केते पावन पाणी वै संतर केते कान महेश केते बरमे घाट घड़ी है रूप रंग के वेश केत्या करम भूमि मेर केते केते धूप देश केते इंद चंद सूर केते केते मंडल देश केते सिद्ध बोधनाथ केते केते देवी वेश केते देवदानु मुन केते केते रतन समुंद केतिया खाणी केतिया बाणी केते पातन रिंद केतिया सुरती सेवक केते नानक अंत नायंत। ज्ञान खंड में ज्ञान प्रचंड तिथै नाद विनोद कोड आनंद शर्म खंड की बाणी रूप तिथै काटत घड़िया बहुत अनूप ताकियां गल्लां कथिया ना जाहे जे को कह पिछे पछताए तिथै घड़िया सुरत मत मन बुद्ध तिथै घड़िया सुरा सिद्धां की सुध कर्म खंड की बाणी जोर तिथै होर ना कोई होर तिथै जोध महामल सूर तिन में राम रहे आप रपूर तिथै सीतो सीता महिमा माहि ताके रूप न कथने जाहि नाह मरै न ठागे जाहि जिनके राम वसै मन माहि तिथै भगतो सहके लोभ करै आनंद सच्चा मन सोहि सच खंड वसै निरंकार कर कर वेखै नजर निहाल तिथै खंड मंडल वर भंड जे को कथै ता अंत ना अंत तिथै लो आकार जिब जिब हुक्म तिवै तिवकार वेखै विगसै कर विचार नानक कथना करड़ा सार जत पहारा धीर सुनियार अहरण मत वेद हथियार पाओ खलागन तबताओ पांडा पाओ अमृत तित ढाल घड़िया शब्द सची टकसाल जिनको नदर।

ते एक्योंकार सतगुर प्रसाद श्री वाहेगुरु जी की फतेह जाप श्री मुखवाक पातशाही दसवें छपै छंद तव प्रसाद चक्र चहन अर बरन जात अर पात नहन जेहे रूप रंग अर एख भेख को कहन सकत के अचल मूर्तन भव प्रकाश अमतोज कहिजै कोट इंद्र इंद्राण साहे साहान गणिजै त्रिभवन महीप सुर नर असुर नेत नेत बाण त्रिण कहत तव सर्व नाम कथै कवन कर्म नाम बरनत सुमत भुजंग प्रयात छंद नमस्तवंग अकाले नमस्तवंग कृपाले नमस्तंग अरूपे नमस्तंग अनूपे नमस्तंग अपेखे नमस्तंग अलेखे नमस्तंग अकाये नमस्तंग अजाये नमस्तंग गंजे नमस्तंग पंजे नमस्तंग अनामे नमस्तंग अठामे नमस्तंग कर्मंग नमस्तंग अतर्मंग नमस्तंग अनामंग नमस्तंग तामंग नमस्तंग अजीते नमस्तंग अपीते नमस्तंग अबाहे नमस्तंग अटाहे नमस्तंग नीले नमस्तंग नादे नमस्तंग छेदे नमस्तंग गादे नमस्तंग गंजे नमस्तंग पंजे नमस्तंग उदारे नमस्तंग पारे नमस्तंग सोएक नमस्तंग अनेक नमस्तंग भूते नमस्तंग जूपे नमस्तंग निर्कर्मे नमस्तंग निर्परमे नमस्तंग निर्देशे नमस्तंग निर्पेशे नमस्तंग निर्णामे नमस्तंग निर्कामे नमस्तंग निर्ताते नमस्तंग निर्काते नमस्तंग निर्तूते नमस्तंग अपूते नमस्तंग लोके नमस्तंग सोके नमस्तंग निर्तापे नमस्तंग थापे नमस्तंग त्रिमाणे नमस्तंग निदाने नमस्तंग गाहे नमस्तंग बाहे नमस्तंग त्रिवर्गे नमस्तंग सर्गे नमस्तंग प्रभोगे नमस्तंग सुजोगे नमस्तंग अरंगे नमस्तंग अपंगे नमस्तंग अगम्ये नमस्तस्तरमे नमस्तंग जलासरे नमस्तंग निरासरे नमस्तंग जाते नमस्तंग पाते नमस्तंग अमजवे नमस्तस्त अजवे अदेसंग देसे नमस्तंग पेसे नमस्तंग निर्तामे नमस्तंग निर्बामे नमो सर्व काले नमो सर्व दयाले नमो सर्व रूपे नमो सर्व पूपे नमो सर्व खापे नमो सर्व थापे नमो सर्व काले नमो सर्व पाले नमस्तस्त देव नमस्तंग पेव नमस्तंग जन्मे नमस्तंग सुबनमे नमो सर्व गौणे नमो सर्व पौणे नमो सर्व रंगे नमो सर्व पंगे नमो काल काले नमस्तस दयाले नमस्तंग बरणे नमस्तंग मरणे नमस्तंग जरारंग नमस्तंग कृतारंग नमो सर्व तंदे नमोस्त बंधे नमस्तंग निरसाके नमस्तंग निर्बाके नमस्तंग रहीमे नमस्तंग करीमे नमस्तंग अनंते नमस्तंग महंते नमस्तस्तरागे नमस्तंग सुहागे नमो सर्व सोखं नमो सर्व पोखं नमो सर्व कर्ता नमो सर्व हर्ता नमो जोग जोगे नमो भोग भोगे नमो सर्व दयाले नमो सर्व पाले चाचरी छंद तव प्रसाद अरूप है अनूप है अजू है अपू है अलेख है अपेक है अनाम है अकाम है अधे है अपे है अजीत है अपीत है त्रिमाण है निदान है त्रिवर्ग है असर्ग है अनिल है अनाद है अजय है अजाद है अजन्म है अवर्ण है अपूत है अपर्ण है अगंज है अपंज है अजूज है अचंज है अमीक है रफीक है अतंद है अबंद है निर्बूज है असूज है अकाल है अजाल है अल्लाह है अजा है अनंत है महंत है अलीक है निरसीक है निर्लंब है असंब है अगम है अजम है अपूत है अछूत है अलोक है अशोक है अकर्म है अपर्म है अजीत है अपीत है अबा है अगा है अमान है निदान है अनेक है फिर एक है पुयंग प्रयात छंद नमो सर्वमाने समस्ते निदाने नमो देव देवे अपेखी अपेवे नमो सर्व काले नमो सर्व पाले नमो सर्व गौणे नमो सर्व पौणे
अनंगी अनाथे निरसंगी परमाथे, नमो पान पाने नमो मान माने, नमो चंद्र चंद्रे नमो पान पाने, नमो गीत गीते नमो तान ताने, नमो नृत्य नृत्ये नमो नाद नादे, नमो पान पाने नमो बाद बादे, अनंगी अनामे।

नमो नित्य नारायणे क्रूर कर्मे, नमो प्रेत प्रेत देवे सुधर्मे, नमो रोग हर्ता नमो राग रूपे, नमो शाह शाहं नमो पूप पूपे, नमो दान दाने नमो मान माने, नमो रोग रोगे नमस्तं सनाने, नमो मंत्र मंत्रं नमो जंत्र जंत्रं, नमो इष्ट इष्टे नमो तंत्र तंत्रं, सदा सच्चिदानंद सर्वं परणासी, अनूपे अरूपे समस्तोल निवासी, सदा सिद्धदा बुद्धदा वृद्ध कर्ता, अदो उर्ध अर्धं अगं ओग हर्ता, परं परम परमेश्वरं प्रोज पालं, सदा सर्वदा सिद्धदाता दयालं, अचेति अपेति अनामं अकामं, समस्तोपराजी समस्तस्ततामं। तेरा जोर चात्री छंद जले हैं थले हैं अपीत हैं अपे हैं, प्रभु हैं अजू हैं अदेश हैं अपेश हैं, भुजंग प्रयात छंद अगादे अबादे अनंदी स्वरूपे, नमो सर्वमाने समस्ति निदाने, नमस्वंग निर्णाथे नमस्वंग प्रमाते, नमस्वंग अगंजे नमस्वंग अपंजे, नमस्वंग काले नमस्वंग पाले, नमो सर्वदेशे नमो सर्वपेशे, नमो राज राजे नमो साज साजे, नमो शाह शाहे नमो माह माहे, नमो गीत गीते नमो प्रीत प्रीते, नमो रोख रोखे नमो सोख सोखे, नमो सर्व रोगे नमो सर्व भोगे, नमो सर्व जीतं नमो सर्व पीतं, नमो सर्व ज्ञानं नमो परम तानं, नमो सर्व मंत्रं नमो सर्व जंत्रं, नमो सर्व दृश्यं नमो सर्व कृसं, नमो सर्व रंगे त्रिपंगी अनंगे, नमो जीव जीवं नमो बीज बीजे, अखिज्जे अपिज्जे समस्तं प्रसिज्जे, कृपालं स्वरूपे कुकर्मं परणासी, सदा सर्वदा रिद्ध सिद्धं निवासी, चरपट छंद तव प्रसाद अमृत कर्मे अवृत धर्मे, अखल जोगे अचल भोगे, अचल राजे अटल साजे, अखल धर्मं अलख कर्मं, सर्वं दाता सर्वं ज्ञाता सर्वं पाने सर्वं माने, सर्वं प्राणं सर्वं त्राणं सर्वं भुक्ता सर्वं जुगता, सर्वं देवं सर्वं पेवं सर्वं काले सर्वं पाले, रुआल छंद तव प्रसाद आद रूप अनाद मूर्त अजोन पुरख अपार, सर्व मान त्रिमान देव अपेव आद उदार, सर्व पालक सर्व कालक सर्व गोपन काल, जत्र तत्र विराजही अवतूत रूप रसाल, नाम ठाम न जात जाकर रूप रंग न रेख, आद पुरख उदार मूर्त अजोन आद असेख, देश और न पेश जाकर रूप रेख नराग, जत्र तत्र दिशा विशा हुए फैले अनुराग, नाम काम विहीन पेखत ताम हूँ नह जाहे, सर्व मान सर्वत्र मान सदैव मान तताहे, एक मूर्त अनेक दर्शन कीन रूप अनेक, खेल खेल अखेल खेलन अंत को फिर एक, देव पेव न जान ही जह वेद और कतेव, रूप रंग न जात पात सो जान नहीं कह जेव, तात मात न जात जाकर जन्म मरण विहीन, चक्र बक्र फिरे चतुर चक मान ही पुरतीन, लोक चौदह के बिखे जग जाप ही जह जाप, आद देव अनाद मूर्त थाप्यो सब जह थाप, परम रूप पुनीत मूर्त पूर्ण पुरख अपार, सर्व विश्व रच्यो स्वयंभव गणन पंजनहार, कालहीन कला संयुक्त अकाल पुरख अदेश, धर्म ताम सु परम रहत अपूत अलख अपेश, अंग राग नारंग जाकह जात पात न नाम, गर्भ गंजन दुष्ट पंजन मुक्त दायक काम, आप रूप अमीक अन उस्त एक पुरख अवतूत, गर्भ गंजन सर्व पंजन आद रूप असूत, अंगहीन अपंग अनातम एक पुरख अपार, सर्व लायक सर्व कायक सर्व को प्रतपार, सर्व गंता सर्व हंता सर्व तेयन पेख, सर्व शास्त्र ना जानही जय रूप रंग अर रेख, परम वेद पुराण जाकह नेत पाखत नित, कोट सिमृत पुराण शास्त्र ना आवही भोचित, मधुपार छंद तव प्रसाद, गुण गण उदार महिमा अपार आसन अपंग उपमा।

अनंग अनपौ प्रकाश निषदन अनास आजान बाहु शाहान शाहु राजान राज पानान पान देवान देव उपमा महान इंद्रान इंद्र बालान बाल रंकान रंक कालान काल अनुभूत अंग अभ अपंग गत मित अपार गुणगन उदार मुन गन प्रणाम निरपय निकाम अत दुत प्रचंड मित गत अखंड आलस्य कर्म आदृश्य धर्म सर्वाभरणाढ्य अनदंड बाढ्य चाचरी छंद तव प्रसाद गोविंदे मुकंदे उदारे अपारे हरियंग करियंग निर्णामे अकामे पुजंग प्रयात छंद चत्र चक्र कर्ता चत्र चक्र हर्ता चत्र चक्र दाने चत्र चक्र जाने चत्र चक्र वर्ती चत्र चक्र प्रती चत्र चक्र पाले चत्र चक्र काले चत्र चक्र पासे चत्र चक्र वासे चत्र चक्र मान्य चत्र चक्र दान्य चाचरी छंद न सत्र न मित्र न परमंग न पित्र न कर्मंग न काय अजन्मंग अजाय न चित्र न मित्र परे हैं पवित्र पृथ्वी से अदि से अदृश्य अकृश्य भगवती छंद तो प्रसाद कथते के आछिज देश के आपिज पेश के आगंज कर्म के आपंज परम के आपिज लोक के आदित्य शोक के अवतूत वर्ण के विभूत करण के राजन प्रभा है के धर्मंग तुजा है के अशोक वर्ण के सर्व अपर्ण के जगतंग कृति है के छत्रंग छत्री है के ब्रह्मंग स्वरूप है के अनुपो अनुप है के आद अदेव है के आप अपेव है के चित्रंग विहीन है के एक अधीन है के रोजी रजा कह रही मैं रिहा कह के पाक बेअब है के गैबुल गैब है के अफुल गुना है के शाहन शाह है के कारण पुनिंद है के रोजी देहिंद है के राजक रहीम है के कर्मंग करीम है के सर्वंग कली है के सर्वंग दली है के सर्वत्र मान्य है के सर्वत्र दान्य के सर्वत्र गौण है के सर्वत्र पौण है के सर्वत्र देश है के सर्वत्र पेश है के सर्वत्र राज्य है के सर्वत्र साज है के सर्वत्र दीन है के सर्वत्र लीन है के सर्वत्र जाहु के सर्वत्र पाहु के सर्वत्र देश है के सर्वत्र पेश है के सर्वत्र काल है के सर्वत्र पाल है के सर्वत्र हंता के सर्वत्र गंता के सर्वत्र पेखी के सर्वत्र पेखी के सर्वत्र काज है के सर्वत्र राज है के सर्वत्र सुख है के सर्वत्र पोख है के सर्वत्र त्राण है के सर्वत्र प्राण है के सर्वत्र देश है के सर्वत्र पिस है के सर्वत्र मान्य है सदैव प्रधान्य है के सर्वत्र जाप्य है के सर्वत्र थाप्य है के सर्वत्र पान है के सर्वत्र मान है के सर्वत्र इंद्र है के सर्वत्र चंद्र है के सर्वं कलीम है के परमं फहीम है के आकल अलाम है के साहिब कलाम है के हुस्न वजू है तमामुल रुजू है हमें सुल सलाम है सलीखत मुदाम है गनी मुल शिकस्त है गरीब उल परस्त है बिलंदुल मकान है जमीन उल जमान है तमीजुल तमाम है रुजू अल निदान है हरीफुल अजीम है रजायक यकीन है अनेकुल तरंग है अपेद है अपंग है अजीजुल निवाज है गनीमुल की राज है निरुक्त स्वरूप है त्रिमुक्त विभूत है प्रभुक्त प्रभा है संयुक्त सुधा है सदैव स्वरूप है अपेदी अनूप है समस्तोपराज है सदा सर्वसाज है समस्तुल सलाम है सदैव अकाम है निर्बाध स्वरूप है अगाध है अनूप है उवंग आद रूपे अनाद स्वरूपे अनंगी अनामे त्रिपंगी त्रिकामे त्रिवर्गंग त्रिबाधे अगंजे अगाधे शुभंग सर्व भागे सो सर्वा अनुरागे त्रिपुत स्वरूप है अछिज है अछूत है के नरकंग प्रणास है पृथ्वल प्रवास है निरुक्त प्रवाह है सदैवंग सदा है विपुक्त स्वरूप है प्रयुक्त अनूप है निरुक्त सदा है विपुक्त प्रभा है अनोकत स्वरूप है प्रयुक्त अनूप है चाचरी छंद अपंग है अनंग है अपेक है अलेख है अपर्म है अकर्म है अनाद है जुगाद है अजय है अपय है अजय है अभय है अपूत है अतूत है अनास है उदास है अतंग है अबंध है अपगत है विरक्त है अनास है प्रकाश है निचिंत है सुनिंत है अलिख है अधिक है
अलेख हैं, अपेख हैं, अटा हैं, अगाह हैं, असंभ हैं, अगम्भ हैं, अनील है, अनाद है, अनित्य हैं, सुनित्य हैं, अजात हैं, अजाद हैं, चरपट छंद तव प्रसाद, सर्वंग हंता सर्वंग गंता, सर्वंग ख्याता सर्वंग ज्ञाता, सर्वंग हर्ता सर्वंग कर्ता, सर्वंग प्राणं सर्वंग त्राणं, सर्वं कर्मं सर्वं धर्मं सर्वं युक्ता सर्वं मुक्ता, सावल छंद तव प्रसाद, नमो नरकनासे सदैवं प्रकाशे अनंगं स्वरूपे अपंगं विभूते, परमाथं परमाथे सदा सर्वसाथे अगाध स्वरूपे निर्बाध विभूते, अनंगी अनामे त्रिपंगी त्रिकामे नृपंगी स्वरूपे सर्वंगी अनूपे, न पुत्र न पुत्र न सत्र न मित्र न तात न मात न जात न पात, निरसाकं सरीक है अमितो अमीक है, सदैवं प्रवाह है अजय है अजा है, भगवती छंद तव प्रसाद, के जाहर जहूर है के हाजर हजूर है, हमेशल सलाम है समस्तल कलाम है, के साहिब दिमाग है के हुसनल चिराग है, के कामल करीम है के राजक रहीम है, के रोजी देहंद है के राजक रहिंद है, करीमुल कमाल है के हुसनल जमाल है, गनीमुल खिराज है गरीबुल निवाज है, हरीफुल सिकन है हिरासुल फिकन है, कलंकंग प्रणास है समस्तुल निवास है, अगंजल गनीम है रजायक रहीम है, समस्तुल जुबा है के साहिब किरा है, के नरकंग प्रणास है बहस्तुल निवास है, के सरबुल गवन है हमेशुल रवन है, तमामुल तमीज है समस्तुल अजीज है, परम परम ईस है समस्तुल अदीस है, अदेशुल अलेख है हमेशुल अपेख है, जमीनुल जमा है अमेकुल इमा है, करीमुल कमाल है के जरूरत जमाल है, के अचलंग प्रकाश है के अमितो सुबास है, के अजब स्वरूप है के अमितो विभूत है, के अमितो पसा है के आत्म प्रवाह है, के अचलंग अनंग है के अमित तो अपंग है, मधुपार छंद तव प्रसाद, मन मन प्रणाम गुणगन मुदाम, अरबर अगंज हर नर प्रभंज, अनगन प्रणाम मन मन सलाम, हर नर अखंड बरनर अमंड, अनुभव अनास मन मन प्रकाश, गुणगन प्रणाम जलथल मुदाम, अनछिज अंग आसन अपंग, उपमा अपार गतमित उदार, जलथल अमंड दिस विस अपंड, जल थल महंत दिस विस बेअंत, अनपवनास त्रित तर तुरास, आजान बाहु एक सदाहु, ओंकार आद कथनी अनाद, खलखंड खयाल गुरबर अकाल, कर कर प्रणाम चित चरण नाम, अनछिज गात आजिज नबात, अनचंज गात अनरंज बात, अनटुट पंडार अनठट अपार, आडीठ धर्म अतटीठ कर्म, अनब्रण अनंत दाता महंत, हर बोल मना छंद तव प्रसाद, करुणालय है अर्काल्य है खलखंडन है महमंडन है, जगदेश्वर है परमेश्वर है, कल कारण है सर्ववारण है, त्रित के तरण है जग के करण है, मन मान्य है जग जान्य है, सर्वं पर है सर्वं कर है, सर्व पास्य है सर्वनास्य है, करुणाकर है विश्वंबर है सर्वेश्वर है जगतेश्वर है, ब्रह्मंडस है खल खंडस है, परते पर है करुणाकर है, अजप्पा जप है अथप्पा थप है, अकृता कृत है अमृता मृत है, अमृता मृत है करुणाकृत है, अकृता कृत है तरणी तृत है, अमितेश्वर है परमेश्वर है, अकृता कृत है अमृता मृत है, अजब्बा कृत है अमृता मृत है, निर्णायक है खलकायक है, विश्वंबर है करुणालय है, निरपनायक है सर्वपायक है, भाव पंचन है अर्गंजन है, रिप तापन है जप जापन है, अकलंकृत है सर्वाकृत है, कर्ता कर है हर्ता हर है, परमात्म है सर्वात्म है, आत्म बस है जस के जस है, भुजंग प्रयात छंद नमो सूर्य सूर्जे, नमो चंद्र चंद्रे, नमो राज राजे, नमो इंद्र इंद्रे, नमो अंधकारे, नमो तेज तेजे, नमो बृंद बृंदे, नमो बीज बीजे, नमो राजसंग तामसंग सात रूपे, नमो परम तत्तंग अतत्तंग स्वरूपे, नमो जोग जोगे, नमो ज्ञान ज्ञाने, नमो मंत्र मंत्रे, नमो ध्यान ध्याने, नमो युद्ध युद्धे, नमो ज्ञान ज्ञाने, नमो भोज भोजे, नमो पान पाने, नमो कलह कर्ता, नमो सात रूपे, नमो इंद्र इंद्रे अनादंग विभूते,
कलंकार रूपे अलंकार अलंके नमो आस आसे नमो बांक बंके अपंगी स्वरूपे अनंगी अनामे त्रिपंगी त्रिकाले अनंगी अकामे एक अक्षरी छंद अजय अलय अपय अभय अपू अजू अनास अकाश अगंज अपंज अलख अपख अकाल दयाल अलेख अपेख अनाम अकाम अगाह अटाह अनाथे परमाथे अजोनी अमोनी नारागे नारंगे नारूपे नारेखे अकर्मंग अपरमंग अगंजे अलेखे भुजंग प्रयात छंद नमस्तोल परनामे समस्तोल परनासे अगंजल अनामे समस्तोल निवासे निरकामंग विभूते समस्तोल स्वरूपे कुकर्मंग परनासी सुतर्मंग विभूते सदा सच्चिदानंद सतरंग परनासी करिमुल कुनिंदा समस्तोल निवासी अजायब विभूते गजायब गनी में हरियंग करियंग करिमुल रही में चत्र चक्रवर्ती चत्र चक्र भुगते स्वयंभव शुभंग सर्वदा सर्वजुगते दुकालंग परनासी दयालंग स्वरूपे सदा अंग संगे अपंगंग विभूते दुकालंग परनासी दयालंग स्वरूपे सदा अंग संगे अपंगंग विभूते। एक ओंकार वाहेगुरु जी की फतेह पातशाही दसवीं तव प्रसाद सवैये श्रावक शुद्ध समूह सिद्धांत के देख फिरो घर जोग जति के सूर सुरार्दन शुद्ध सुधारक संत समूह अनेक मति के सारे ही देश को देख रहे मत कौ न देखियत प्राणपति के श्री भगवान की पाई कृपा हूँ ते एक रति बिन एक रति के मात्यम तंग जरेजर संग अनूप उतंग सुरंग सुवारे कोट तरंग कुरंग से कूदत पौन के गौण को जात निवारे भारी भुजान के भूप भली बिद न्यावत शीस न जात बिचारे एते पय तो कहाँ पय भूपत अंत को नांगे ही पाए पधारे जीत फिर सब देश दिशान को बाजत ढोल मृदंग नगारे गुंजत गूढ़ गिजान के सुंदर हिंसत है राज हजारे भूत भविख भवान के भूपत कौन गने नहीं जात बिचारे श्रीपत श्री भगवान भजे बिन अंत को अंत के ताम सिधारे तीर्थ नान दया दम दान सो संजम ने मने कब सेखे वेद पुराण कतेब कुरान जमीन जमान सुबान के पेखे पौन आहार जति जत तार सबे सो विचार हजार के देखे श्री भगवान पजे बिन भूपत एक रति बिन एक न लेखे शुद्ध सिपाह दुरंत दुबाह सुसाज सनाह दुर्जान दलेंगे भारी गुमान परे मन मैं कर पर्वत पंख हले न हलेंगे तोर अरीन मरोर मवासन माते मतंगन मान मलेंगे श्री पत श्री भगवान कृपा बिन त्याग जहान निदान चलेंगे वीर अपार बरे बड़े बरिया अविचार सार की धार पछैया तोर तदेश मलिंद मवासन माते गिदान के मान मलैया गाड़े गड़ान के तोड़न हार सुबातन ही चक चार लवैया साहिब श्री सब गो सिर नायक जाचक अनेक सो एक दवैया दानव देव फनिंद निसाचर भूत भविख भवान जपेंगे जीव जिते जल मैं थल मैं पल ही पल मैं सब थाप तपेंगे पुन प्रतापन बाढ़ जैत तुन पापन के बहु पुंज खपेंगे साध समूह प्रसन्न फिरे जग सत्र सब अवलोक चपेंगे मानव इंद्र गजेंद्र नराधप जोन त्रिलोक को राज करेंगे कोट स्नान गजाद दान अनेक सोमवर साज बरेंगे ब्रह्म महेश्वर विसन सचिपत अंत फसे जम फास बनाएंगे जे नर श्रीपत के प्रस है पग ते नर फेर न देह तरेंगे कहाँ पयो जो दो लोचन मूंद के बैठ रहो बक ध्यान लगायो नात फिरयो लिए सात समुन्द्र न लोक गयो परलोक गवायो बास कियो बख्यान सो बैठ के ऐसे ही ऐसे सो बैस बतायो साच कौन सुन लेहो सुबह जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो काहू लै पाहन पूज तरयो सिर काहू लै लिंग गरे लटकायो काहू लख्यो हर अवाची दिशा में काहू पछा को शीस निवायो को बतान को पूजत है पस को मृतान को पूजन तायो पूर क्रिया हुर्जो सब ही जग श्री भगवान को भेद न पायो कूर क्रिया उर्ज्यो सब ही जग श्री भगवान को भेद न पायो। पातशाही दसवें कबीर बाज बेनती चो पई हमरी करो हाथ डर अच्छा पूर्ण हुई चित की इच्छा तव चंदन मन रहे हमारा अपना जान करो प्रतिपारा हमरे दुष्ट बै तुम कावो आप हाथ रह मोहे बचाओ सुखी बसै मोरो परवारा सेवक सिख सवै करतारा मोर इच्छा निज कर दे करिय सब बैरन को आज संघरिय
पूर्ण हुए हमारी आशा, तोर भजन की रह प्यासा, तुम्हें छाट कोई अवर न त्याऊं, जो बर चहो सो तुम ते पाऊं, सेवक सिख हमारी तारिय, चुन चुन सत्र हमारे मारिय, आप हाथ रह मुझे भरिय, मरण काल का त्रास निवरिय, पूजो सदा हमारे पच्छा, श्री स्तुजु करे हो रक्षा, राख ले मुहे राखन हारे, साहेब संत सहाय प्यारे, दीन बंद दुष्टन के हंता, तुम हो प्रीत तुर दसंता, काल पाए ब्रह्मा भक्तरा, काल पाए शिव जू अवतरा, काल पाए कर विषण प्रकाशा, सकल काल का किया तमाशा, जमन काल जोगी शिव कियो, वेदराज ब्रह्मा जू थियो, जमन काल सब लोक सुवारा, नमस्कार है ताहे हमारा, जमन काल सब जगत बनायो, देव दै जक्षण उपजायो, आद अंत एक अवतारा, सोई गुरु समझियो हमारा, नमस्कार तिसी कुमारी, सकल प्रजाजनी आप सुवारी, शिव गुण को सब गुण सुख दियो, सत्तन को पलमो बद कियो, घट घट के अंतर की जानत, भले बुरे की पीर पछानत, चीटी ते कुंचर सूला, सब पर कृपा दृष्ट कर फूला, संतन दुख पाए ते दुखी, सुख पाए साधन के सुखी, एको एक की पीर पछान, घट घट के पटपट की जान, जब उत्कर्ख करा कर तारा, प्रजा तरत तब देहे अपारा, जब अकर्क करत हूँ कबहू, तुम मैं मिलत दे तरसम हूँ, जेते बदन शिष्ट सब तारे, आप अपनी बूझ उचार, तुम सभी ते रहत निरालम, जान कबीर पेदर आलम, निरंकार निर्भकार निर्लंब, आद अनिल अनाद असंभ, ताका मूड उचारत भेदा, जाको भेव न पावत भेदा, ताको कर पाहन अनुमानत, महामूड कछ भेद न जानत, महादेव को कहत सदासव, निरंकार का चीनत न पिव, आप अपने बुद्ध है जेती, बरनत भिन्न भिन्न तो है तेती, तुमरा लखना जाय पसारा, कह बिद सजा प्रथम संसारा, एक क्या रूप अनूप स्वरूपा, रंग प्यो राव कही पूपा, हंडज जे रज सेतज कीनी, उत्पज खान बहोर रच दीनी, कहो फूल राजा हुए बैठा, कहो सिमट प्यो शंकर कैठा, सगरी शिष्ट दिखाए चंभव, आद जुगाद स्वरूप संभव, अब रक्षा मेरी तुम करो, सिख बार असिख संगरो, दुष्ट जिते उठवत उत्पाता, सकल मलेश करो रण काता, जे अस्तुज तव शरणी परे, तिनके दुष्ट दुख्त हवै मरे, पुरख जवन पग परे तिहारे, तिनके तुम संकट सब टारे, जो कल को कि बारते हैं, ताकि काल निकट नह है, रक्षा होय तह सब काला, दुष्ट अरिष्ट टरे तत्काला, कृपा दृष्ट तन जाहि निहर हो, ताकि ताप तनक मोहर हो, रिद्ध सिद्ध कर्म सब होई, दुष्ट छाछ वैस कह न कोई, एक बार जंत में सुभारा, काल फास काहि उबारा, जिन नर नाम तिहारो कहा, दारद दुष्ट दोखते रहा, खड़ग केत में शरण तिहारी, आप हाथ दे लेहु बारी, सर्ब ठोर मोह सहाई, दुष्ट दोखते लेहु बचाई, खड़ग केत में शरण तिहारी, आप हाथ दे लेहु बारी, सर्ब ठोर मोहो सहाई, दुष्ट दोखते लेहु बचाई, स्वैया पाएंगे जब ते तुमरे, तब ते को आंख तेरे निहान्यो, राम रहीन पुराण कुरान, अनेक कह मत एक न मान्यो, सिमरत शास्त्र बेस बैभो भेद कह एक न जान्यो, शीरसपान कृपा तुमरी कर, मैं न कहो सब तो ही बखान्यो, दोहरा सगल द्वार को छाड़ के गयो तुहारो द्वार, बाहें गहे की लाजस गोविंद दास सुहार, राम कली महला तीजा, नंद क्योंकार सदगुरु प्रसाद, आनंद प्या मेरी माए, सतगुरु मैं पाया, सतगुरता पाया सहज सेती, मन वजियां वधाइयां, राग तन परवार परियां, शब्द गावनी आईया, शब्दोता गाव हरि केरा, मन जनी वसाया, कह नानक आनंद हुआ, सतगुरु मैं पाया, ए मन मेरे आ तू सदा रहो हर नाले, हर नाल रहो तू मन मेरे, दुख सब विसारना, अंगीकार हो करे तेरा, कार्य सब सुवारना, सबना गला समर्थ स्वामी, सो क्यों मनो विसारे, कह नानक मन मेरे, सदा रहो हर नाले, साचे साहिबा क्या नहीं करते रह, करता तेरा सब किछ है, जिस दे है सो पावे, सदा सित सलाह तेरी, नाम मन वसावे, नाम जिनके मन वस्या, वाजे शब्द कनेरे, कह नानक सच्चे साहिब क्या नहीं करते रह, साचा नाम मेरा आधारू, साच नाम आधार मेरा, जिन भुखा सब गुआइया, कर शांत सुख मन वसिया, जिन इच्छा सब पुजाइया, सदा कुर्बान कीता गुरु विटो, जिस दिया यह वडियाइया, कह नानक सुनो संतो, शब्द तरो प्यारो, साचा नाम मेरा आधारू, वाजे पंच शब्द तित कर सुभागै,
ਘਰ ਸੁਭਾਗੈ ਸ਼ਬਦ ਵਾਜੇ ਕਲਾ ਜਿਤ ਕਰ ਧਾਰੀਆ ਪੰਚ ਰੂ ਤੁਧ ਵਸ ਕੀਤੇ ਕਾਲ ਕੰਟਕ ਮਾਰਿਆ ਤੁਰ ਕਰਮ ਪਾਇਆ ਤੁਧ ਜਿਨ ਕੋ ਸੇ ਨਾਮ ਹਰ ਕੈ ਲਾਗੇ ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਤੈ ਸੁਖ ਹੋਆ ਤਿਤ ਕਰ ਅਨਹਦ ਵਾਜੀ ਸਾਚੀ ਲਿਵੈ ਬਿਨ ਦੇਹ ਨਿਮਾਣੀ ਦੇਹ ਨਿਮਾਣੀ ਲਿਵੈ ਬਾਝੋ ਕਿਆ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰੀਆ ਤੁਧ ਬਾਜ ਸਮਰਥ ਕੋਈ ਨਾਹੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਬਨਵਾਰੀਆ ਏਸ ਨ ਹੋਰ ਥਾਉ ਨਾਹੀ ਸ਼ਬਦ ਲਾਗ ਸਵਾਰੀਆ ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਲਿਵੈ ਬਾਝੋ ਕਿਆ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰੀਆ ਆਨੰਦ ਆਨੰਦ ਸਭ ਕੋ ਕਹਿ ਆਨੰਦ ਗੁਰੂ ਤੇ ਜਾਣਿਆ ਜਾਣਿਆ ਆਨੰਦ ਸਦਾ ਗੁਰ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਪਿਆਰਿਆ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਕਿਲ ਕੱਟੇ ਗਿਆਨ ਅੰਜਨ ਸਾਰਿਆ ਅੰਦਰੋ ਜਿਨਕਾ ਮੋਹ ਟੁੱਟਾ ਤਿਨਕਾ ਸ਼ਬਦ ਸੱਚਾ ਸਵਾਰਿਆ ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਇਹੋ ਆਨੰਦ ਹੈ ਆਨੰਦ ਗੁਰ ਤੇ ਜਾਣਿਆ ਬਾਬਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇ ਸੂਈ ਜਨ ਪਾਵੇ ਪਾਵੇ ਤਾਂ ਸੋ ਜਨ ਦੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿਆ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰਿਆ ਇੱਕ ਭਰਮ ਭੁੱਲੇ ਫਿਰੈ ਦਹਿ ਦਿਸ ਇੱਕ ਨਾਮ ਲਾਗ ਸਵਾਰਿਆ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦੀ ਮਨ ਭਇਆ ਨਿਰਮਲ ਜਿਨਾ ਭਾਣਾ ਭਾਵੇ ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਜਿਸ ਦੇਹ ਪਿਆਰੇ ਸੋਈ ਜਨ ਪਾਵੇ ਆਵੋ ਸੰਤ ਪਿਆਰੇ ਹੋ ਅਕਥ ਕੀ ਕਰੈ ਕਹਾਣੀ ਅਕਥ ਕੇਰੀ ਕਿਤ ਦੁਆਰੈ ਪਾਈਐ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਸਭ ਸੌਂਪ ਗੁਰ ਕੋ ਹੁਕਮ ਮੰਨਿਆ ਪਾਈਐ ਹੁਕਮ ਮੰਨਿਓ ਗੁਰੂ ਕੇਰਾ ਗਾਵੋ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਸੁਣੋ ਸੰਤੋ ਕਥਿਓ ਅਕਥ ਕਹਾਣੀ ਇਹ ਮਨ ਚੰਚਲਾ ਚਤੁਰਾਈ ਕਿਨੈ ਨਾ ਪਾਇਆ ਚਤੁਰਾਈ ਨਾ ਪਾਇਆ ਕਿਨੈ ਤੂੰ ਸੁਣ ਮਨ ਮੇਰਿਆ ਇਹ ਮਾਇਆ ਮੋਹਣੀ ਜਿਨ ਏਤ ਭਰਮ ਭੁਲਾਇਆ ਮਾਇਆ ਤਾਂ ਮੋਹਣੀ ਤਿਨੈ ਕੀਤੀ ਜਿਨ ਠਗੋਲੀ ਪਾਈਆ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤਾ ਤਿਸੈ ਵਿਟੋ ਜਿਨ ਮੋਹ ਮੀਠਾ ਲਾਇਆ ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਮਨ ਚੰਚਲ ਚਤੁਰਾਈ ਕਿਨੈ ਨਾ ਪਾਇਆ ਏ ਮਨ ਪਿਆਰਿਆ ਤੂੰ ਸਦਾ ਸੱਚ ਸੰਭਾਲੇ ਏ ਕੁਟੁੰਬ ਤੂੰ ਜੇ ਦੇਖਦਾ ਚੱਲੈ ਨਾਹੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲੇ ਸਾਥ ਤੇਰਾ ਚੱਲੈ ਨਾਹੀ ਤਿਸ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਚਿਤ ਲਾਈਐ ਐਸਾ ਕੰਮ ਮੂਲੇ ਨਾ ਕੀਚੈ ਜਿਤ ਅੰਤ ਪਛੋਤਾਈਐ ਸਤਿਗੁਰ ਕਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੁਣ ਤੂੰ ਹੋਵੈ ਤੇਰੇ ਨਾਲੇ ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਮਨ ਪਿਆਰੇ ਤੂੰ ਸਦਾ ਸੱਚ ਸੰਭਾਲੇ ਅਗਮ ਅਗੋਚਰਾ ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਨਾ ਪਾਇਆ ਅੰਤ ਨਾ ਪਾਇਆ ਕਿਨੈ ਤੇਰਾ ਆਪਣਾ ਆਪ ਤੂੰ ਜਾਣ ਹੈ ਜੀ ਜੰਤ ਸਭ ਖੇਲ ਤੇਰਾ ਕਿਆ ਕੋ ਆਖ ਵਖਾਣੇ ਆਖੇ ਤਾਂ ਵੇਖੇ ਸਭ ਤੂੰ ਹੈ ਜਿਨ ਜਗ ਤੂੰ ਪਾਇਆ ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਤੂੰ ਸਦਾ ਅਗਮ ਹੈ ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਨਾ ਪਾਇਆ ਸੁਰ ਨਰ ਮੁਨ ਜਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਖੋਜਦੇ ਸੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗੁਰ ਤੇ ਪਾਇਆ ਪਾਇਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਕੀਨੀ ਸੱਚਾ ਮਨ ਵਸਾਇਆ ਜੀ ਜੰਤ ਸਭ ਤੋਂ ਦੁਪਾਏ ਇੱਕ ਵੇਖ ਪਰਸਣ ਆਇਆ ਲਭ ਲੋਭ ਅਹੰਕਾਰ ਚੂਕਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਭਲਾ ਪਾਇਆ ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪ ਤੁੱਠਾ ਤਿਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗੁਰ ਤੇ ਪਾਇਆ ਭਗਤਾਂ ਕੀ ਚਾਲ ਨਿਰਾਲੀ ਚਾਲਾਂ ਨਿਰਾਲੀ ਭਗਤਾਂ ਕੇਰੀ ਵਿਖਮ ਮਾਰਗ ਚੱਲਣਾ ਲਭ ਲੋਭ ਅਹੰਕਾਰ ਤਜ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਬਹੁਤ ਨਾਹੀ ਬੋਲਣਾ ਖੰਨੇ ਹੋ ਤਿੱਖੀ ਵਾਲ ਹੋ ਨਿੱਕੀ ਏਤ ਮਾਰਗ ਜਾਣਾ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦੀ ਜਿਨੀ ਆਪ ਤਜਿਆ ਹਰ ਵਾਸਣਾ ਸਮਾਣੀ ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਚਾਲ ਭਗਤਾਂ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਨਿਰਾਲੀ ਜਿਉਂ ਤੂੰ ਚਲਾਏ ਹੈ ਤਿਵ ਚੱਲੇ ਸਵਾਮੀ ਹੋਰ ਕਿਆ ਜਾਣਾ ਗੁਣ ਤੇਰੇ ਜੇ ਤੂੰ ਚਲਾਏ ਹੈ ਤੇ ਵਹਿ ਚੱਲੈ ਜਿੰਨਾ ਮਾਰਗ ਪਾਵਹੇ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਜਿਨ ਨਾਮ ਲਾਏ ਹੈ ਸੇ ਹਰ ਹਰ ਸਦਾ ਧਿਆਵਹੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਥਾ ਸੁਣਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਸੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸੁਖ ਪਾਵਹੇ ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਸਾਹਿਬ ਜਿਉਂ ਭਾਵੈ ਤਿਵੈ ਚਲਾਵਹੇ ਇਹੋ ਸੁਹਿਲਾ ਸ਼ਬਦ ਸੁਹਾਵਾ ਸ਼ਬਦ ਸੁਹਾਵਾ ਸਦਾ ਸੁਹਿਲਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੁਣਾਇਆ ਇਹ ਤਿਨ ਕਹਿ ਮਨ ਵਸਿਆ ਜਿਨ ਧੁਰੋਂ ਲਿਖਿਆ ਆਇਆ ਇੱਕ ਫਿਰੈ ਘਨੇਰੀ ਕਰਹਿ ਗੱਲਾਂ ਗੱਲੀ ਕਿਨੈ ਨਾ ਪਾਇਆ ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਸ਼ਬਦ ਸੁਹਿਲਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੁਣਾਇਆ ਪਵਿੱਤ ਹੋਏ ਸੇ ਜਨਾ ਜਿਨੀ ਹਰ ਧਿਆਇਆ ਹਰ ਧਿਆਇਆ ਪਵਿੱਤ ਹੋਏ ਗੁਰਮੁਖ ਜਿਨੀ ਧਿਆਇਆ ਪਵਿੱਤ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਕੁਟੁੰਬ ਸਹਿਤ ਸਿਉ ਪਵਿੱਤ ਸੰਗਤ ਸੁਭਾਈਆ ਕਹਿੰਦੇ ਪਵਿੱਤ ਸੁਣਦੇ ਪਵਿੱਤ ਸੇ ਪਵਿੱਤ ਜਿਨੀ ਮਨ ਵਸਾਇਆ ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਸੇ ਪਵਿੱਤ ਜਿਨੀ ਗੁਰਮੁਖ ਹਰ ਹਰ ਧਿਆਇਆ ਕਰਮੀ ਸਹਿਜ ਨਾ ਉਪਜੈ ਵਿਣ ਸਹਿਜੈ ਸਹਿਸਾ ਨਾ ਜਾਏ ਨਹਿ ਜਾਏ ਸਹਿਸਾ ਕਿਤੈ ਸੰਜਮ ਰਹੇ ਕਰਮ ਕਮਾਏ ਸਹਿਸੈ ਜੀਉ ਮਲੀਨ ਹੈ ਕਿਤੈ ਸੰਜਮ ਧੋਤਾ ਜਾਏ ਮਨ ਧੋਵੋ ਸ਼ਬਦ ਲਾਗੋ ਹਰਸਿਉ ਰਹੋ ਚਿਤ ਲਾਏ ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਸਹਿਜ ਉਪਜੈ ਇਹੋ ਸਹਿਸਾ ਇਵ ਜਾਏ ਜੀਉ ਮੈਲੇ ਬਾਹਰੋਂ ਨਿਰਮਲ ਬਾਹਰੋਂ ਨਿਰਮਲ ਜੀਉ ਤਾਂ ਮੈਲੇ ਤਿੰਨੀ ਜਨਮ ਜੂਐ ਹਾਰਿਆ ਇਹ ਤਿਸਨਾ ਵੱਡਾ ਰੋਗ ਲੱਗਾ ਮਰਨ ਮਨੋ ਵਿਸਾਰਿਆ ਵੇਦਾਂ ਮਹਿ ਨਾਮ ਉੱਤਮ ਸੋ ਸੁਣੈ ਨਾਹੀ ਫਿਰੈ ਜਿਉ ਬਿਤਾਲਿਆ ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਸੱਚ ਤਜਿਆ ਕੂੜੇ ਲਾਗੇ ਤਿੰਨੀ ਜਨਮ ਜੂਐ ਹਾਰਿਆ ਜਿਉ ਨਿਰਮਲ ਬਾਹਰੋਂ ਨਿਰਮਲ ਬਾਹਰੋਂ ਤਾਂ ਨਿਰਮਲ ਜਿਉ ਨਿਰਮਲ ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ ਕਰਨੀ ਕਮਾਣੀ ਕੂੜ ਕੀ ਸੋਏ ਪਹੁੰਚੈ ਨਾਹੀ ਮਨਸਾ ਸੱਚ ਸਮਾਣੀ ਜਨਮ ਰਤਨ ਜਿਨੀ ਖੱਟਿਆ ਭਲੇ ਸੇਵਣ ਜਾਰੇ ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਮਨ ਨਿਰਮਲ ਸਦਾ ਰਹਿ ਗੁਰ ਨਾਲੇ
जे को सिख गुरु से ती सन्मुख होवे, होवे ता सन्मुख सिख कोई, जियो रह गुर नाले, गुर के चरण हृदय त्याए, अंतर आत्म समाले, आप छड सदा रह परणे, गुर बिन अवरन जाने कोई, कह नानक सुनो संतो, सो सिख सन्मुख होए, जे को गुर ते वेमुख होवे, बिन सदगुर मुक्त न पावे, पावे मुक्त ना होत है कोई, पुछो विवेक किया जाए, अनेक जूनी परम आवे, बिन सदगुर मुक्त न पाए, फिर मुक्त पाए लाग चरणी, सदगुरु शब्द सुनाए, कह नानक विचार देखो, बिन सदगुर मुक्त न पाए, आवो सिख सदगुरु के प्यारे हो, गावो सच्ची बाणी, बाणी का गावो गुरु केरी, बाणिया सिर बाणी, जिनको नदर कर्म होवे, हृदय तना समाणी, पीवो अमृत सदा रहो हो हर रंग, जप्यो सारंग पाणी, कह नानक सदा गावो यह सच्ची बाणी, सतगुरु बिना होर कच्ची है बाणी, बाणी ता कच्ची सतगुरु बाजो होर कच्ची बाणी, कहन दे कच्चे सुन दे कच्चे, कच्ची आंख बखाणी, हर हर नित करे रसना, कहया कछु न जानी, चित जिनका हिर लया माया, बोलन पैर वाणी, कह नानक सतगुरु बाजो होर कच्ची बाणी, गुर का शब्द रतन है, हीरे जित जड़ाओ, शब्द रतन जित मन लागा, एहो उहा समाओ, शब्द रतन जित मन लागा, एहो हुआ समाओ, शब्द सिति मन मिलया, सच्चे लाया पाओ, आपे हीरा रतन आपे जिसनो दे बुझाए, कह नानक शब्द रतन है, हीरा जित जड़ाओ, शिव सक्त आप उपाय कह, करता आपे हुक्म वर्ताए आप वेख्या, गुरमुख किसे बुझाए, तोड़े बंधन होवे मुक्त शब्द मन वसाए, गुरमुख जिसनु आप करे सो होवे एक सस्यो लिवलाए, कह नानक आप करता आपे हुक्म बुझाए, सिमरत शास्त्र पुन पाप विचारते तत्तै सार न जानी, तत्तै सार न जानी गुरु बाजो तत्तै सार न जानी, तिही गुणी संसार भ्रम सुत्ता सुत्या रहन बिहानी, गुर कृपा ते से जे गुर कृपा ते से मन जागे, जिन हर मन वस्या बोलहे अमृत बाणी, कह नानक सो तत्त पाए, जिसनु अन दिन हर लिव लागे जागत रहन बिहानी, माता की उदर में प्रतपाल करे, सो क्यों मनो विसारिय, मनो क्यों विसारिय, एवड दाता जे अग्न में आहार पहुंचावे, उसनु के पोहे न सकी, जिसनु अपने लिव लावे, अपने लिव आपे लाए, गुरमुख सदा संभाली है, कह नानक एवड दाता सो क्यों मनो विसारिय, जैसी अगन उदर में है तैसी बाहर माया, माया अगन सब एको जे ही करता खेल रचाया, जहां तिस पाणा ता जम्या परवार भला पाया, लिव छुड़की लगी तृष्णा माया अमर वरताया, एह माया जित हर विसरै मोह उपजै पाओ दूजा लाया, कह नानक गुर प्रसादी जिन्ना लिव लागी तिन्नी विचे माया पाया, हर आप अमुलक है मुल ना पाया जाए, मुल ना पाया जाए किसे विटो रहे लोक विल लाए, ऐसा सतगुर जी मिले तिसनो सिर सौंपिए विचों आप जाए, जिस दा जियो तिस मिल रहे हर वसै मन आए, हर आप अमुलक है भागत ना के नानका जिन हर पल्ले पाए, हर रास मेरी मन वनजारा, हर रास मेरी मन वनजारा, सतगुर तेरा सजानी, हर हर नित जप्यो जीहो लाहा खट्यो दिहाड़ी, एह तन तिना मिलिया जिन हर आपे पाणा, कह नानक हर रास मेरी मन हुआ वणजारा, ए रसना तू अन रस राच रही तेरी प्यास न जाए, प्यास न जाए होरत कितै जिचर हर रस पल्लै न पाए, हर रस पाए पल्लै पिए हर रस बहुण न तृष्णा लागे आए, एहो हर रस करमी पाइए सतगुर मिले जसे आए, कह नानक होर अन रस सब विसरे जा हर वसै मन आए, ए श्री राम एरिया हर तुम मैं जोत रखी तातू जग मह आया, हर जोत रखी तुद विच तातू जग मह आया, हर आपे माता आपे पिता जिन जियो पाए जगत दिखाया, गुर प्रसादी बुझया ता चलत हुआ चलत नदरी आया, कह नानक सृष्ट का मूल रचिया जोत राखी तातू जग मह आया, मन चाओ पिया प्रभागम सुनया हर मंगल गाओ सखी गृह मंदिर बनया, हर गाव मंगल नित सखिए सोग दुख ना व्यापे, गुर चरण लागे दिन सुभागे अपना फिर जापे, अनहत बाणी गुर शब्द जानी हर नाम हर रस भोगो, कह नानक प्रभ आप मिलिया करण कारण जोगो, ए श्री राम मेरा इस जग में आए के क्या तुद कर्म कमाया, के कर्म कमाया तुद श्री रा जा तू जग में आया,
जिन हर तेरा रचन रचिया सो हर मन ना वसाया गुर प्रसादी हर मन वसिया पूर्ब लिखिया पाया कह नानक यह शरीर प्रवान हुआ जिन सतगुर स्यों चित लाया ए नेत्र हो मेरे हो हर तुम मैं जोत धरी हर बिन अवर न देखो कोई हर बिन अवर न देखो कोई नदरी हर निहालिया यह विश संसार तुम देख दे यो हर का रूप है हर रूप नदरी आया गुर प्रसादी बुझ्या जा विख्या हर एक है हर बिन अवर न कोई कह नानक यह नेत्र अंध से सतगुर मिले दिव्य दृष्ट होई ए सरणो मेरे हो सचै सुनने नो पठाए सचै सुनने नो पठाए शरीर लाए सुनो सत बाणी जित सुनी मन तन हरिया हुआ रसना रस समाणी सच अलख विडाणी ताकि गत मित कही न जाए सच अलख विडाणी ताकि गत कही न जाए कह नानक अमृत नाम है नाम सुनो पवित्र हो वो सच सुनने नो पठाए हर जियो गुफा अंदर रख कह वाजा पवन वजाया वजाया वाजा पौन नौ द्वारे प्रगट किए दसवां गुप्त रखाया गुरुद्वारे लाए भाव ने एक ना दसवां द्वार दिखाया तह अनेक रूप नाव नव निध तिसदा अंत न जाई पाया कह नानक हर प्यारे जियो गुफा अंदर रख कै वाजा पवन वजाया एहो साचा सुहेला सच कर गाव गाव ता सुहेला कर सच जिथे सदा सच त्यावहे सचो त्यावै जा तुद पावै गुरमुख जिना बुझावहे एह सत सबना का खसम है जिस बक्से सो जन पावे कह नानक सच सोहला सच घर गावे आनंद सुनो वडभागियो सगल मनोरथ पूरे पार ब्रह्म प्रभ पाया उतरे सरल विसूरे दुख रोग संताप उतरे।

पुनीत कहते पवित सतगुर रहया पर पूरे बिनवंत नानक गुर चरण लागे वाजे अनहद तूरे। सुनते पुनीत कहते पवित सतगुर रहया पर पूरे बिनवंत नानक।

एक ओंकार वाहिगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय वाह। श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं। प्रथम भगवती सिमर कै गुरु नानक लई ते आए। फिर अंगद गुरु ते अमरदास रामदास हुई सहाय। अर्जुन हर गोबिंदनो सिमरो श्री हर राय। श्री हर कृष्ण त्याई है जिस रिठे सब दुख जाए। तेग बहादुर सिमरै घर नौ नित आवै ताए। सब थाई हुए सहाय दसवें पातशाह। गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी महाराज सब थाई हुए सहाय। सब थाई हुए सहाय दसा पातशाहियां दी आत्मक जोत। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ दर्शन दीदार दा ध्यान करके खालसा जी बोलो जी वाहे गुरु। पंजा प्यारियां चौहां साहिबजादियां चालियां मुक्तियां अठियां जपियां तपियां जिन्हां आप जी का नाम जपया वंड छकिया देख चलाई ते गवाही देख के अनुडिट कीता तिना प्यारियां सचियारियां दी कमाई दा ध्यान करके खालसा जी बोलो जी वाहे गुरु। जिन्हां सिंह संगणियां धर्म हेत सीस दिते बंद बंद कटवाए खोपरियां उतरवाईयां ताने आरियां नाल चिरवाए सिखी कैसा सवासा संग निभाही तिना समूह सिंह सिंगणियां भुजंगियां सिदकवाना दी कमाई दा ध्यान करके खालसा जी बोलो जी। पंजां तख्तां सरबत गुरुद्वारियां दा ध्यान करके खालसा जी बोलो जी। प्रथमें सरबत खालसा जी की अरदास है जी। सरबत खालसा जी को वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु नाम चत्यावे चत्यावन का सदका सर्व सुख होवे। जहां जहां खालसा जी साहेब तहां तहां रक्षा रियायत देग तेग फतेह बिरद की पैज पंथ की जीत। श्री साहेब जी सहाय।

ਸਤਿਗੁਰ ਭੇਟੇ ਪੂਰਾ ਭਾਗ ਸਾਚ ਰੱਤੇ

जिस सिमरत मन हुए प्रगास, मिटह कलेस सुख सहज निवास, तिसह पराप

जन्म जन्म की मैल उतारे, बंधन काट हर संग मिलाए रहा। तीर्थ नाहे कहा सुच मैं सैल, मन कौ व्यापे हौं मैं मैल। कोट कर्म बंधन का मूल, हर के भजन बिन बिरथा पूल। बिन खाए बूझे नहीं भूख, रोग जाए ता उतर है दुख। काम क्रोध लोभ मोह व्यापिया,

गुरस प्रसन्न हुए पौ गए, नाम निरंजन मन महलए, दीन दयाल सदा किरपाल, बिनस गए।

अमृत हर हर रसन पनी रहाओ, चरण कमल स्यों लागू हित, खिन मह बिन से

जत कत पेखो तेरी शरणा, बल बल जाई सतगुर चरना रहाओ। पूरन काम मिले गुरदेव, सब फल दाता निर्मल सेव।

अपार ब्रह्म पूरन मन पानी, जल थल महियल रव्या सोए, नानक सब किछ प्रभ ते होए। पैरो महला पंजवा, मन तन राता राम रंग चरणे, सर्ब मनोरथ पूर्ण करने, आठ पहर गावत भगवंत, सतगुर दीनो पूरा मंत, सो वड भागी।

नाम जपत हर चरण निवास, निर्बिघन भगत भज हर हर नाऊ, रसक रसक हर के गुण गाऊ रहाउ, हर सिमरत किछ चाक न जो है, हर सिमरत दैत देव न पो है, हर सिमरत मोह मान न बद्ध है, हर सिमरत गर्भ जोन न रुद्ध है, हर सिमरन की सगली बेला, हर सिमरन बहुमाहि अकेला, जात अजात जपै जन कोई,

ਕਰਵਾ। ਭਗਤਾ ਮਨ ਆਨੰਦ ਗੋਬਿੰਦ, ਅਸਥਿਤ ਭਈ ਬਿਨਸੀ ਸਭ ਚਿੰਦ।

दिन राती हुए पुनीत धर्म राय जाम काम क्रोध लोभ मद निंदा साध संग मिटिया अभिमान ऐसे संत भेट है वडभागी नानक तिन कै सद कुरबान पहरो महला पंजवा पंच मजमी जो पंचन राखै

जिसनु कर्म करे करतार, साध संग हुए तिस व्यवहार, हर नाम भगत स्यों लागा रंग, कहो नानक तिस

निंदक कै सिर खड़क्यो काल रहाओ। निंदक का कहया कोई न माने, निंदक झूठ बोल पछ

सोए। हर जन करे सुनिचल होए, हर का दास साचा दरबार, जन नानक कहया तत विचार। पहरो महला पंजवा, दोए कर जोर करूं अरदास, जियो पै

घट घट अंतर सगल प्रगास, जप जप जीव है भगत गुणतास। जाकी सेव न बिरथी जाए, मन तने अंतर एक ते आए। गुर उपदेश दया संतोख, नाम निदान निर्मल इव थोक। कर कृपा लीजै लड़ लाए, चरण कमल नानक नित त्याय। पैरो महला पंजवा, सतगुरे अपने सुनी अरदास। कारज आया सगला रास, मन तन अंतर प्रभु ते आया। गुर पूरे डर सगल चुकाया, सब ते वड समरथ गुरदेव। सब सुख पाई तिसकी सेव, रहाओ जाका किया सब किच होए।

अनिक गुणित तुनित ललित अनिक तार मुनि अनिक नाद अनिक बाज निमख निमख अनिक स्वाद अनिक दुख अनिक रोग मिटह जस सुनी नानक सेव अपार देव तटह खटह बरत पूजा गवन पवन जातर करन सगल फल पुनी।

जन्म जन्म के किलविख दुख काट है, दुबदा रत्ती नाराई, हम मूड मुग्ध किछ बूझै नाही, तू आपे दे बुझाई, जो तुद पावै सोई करसी, अवर न करना जाई, जगत उपाय तुद धंधै लाया, पूंडी कार कमाई, जन्म पदार्थ जूवै हारिया, शब्द सुरत न पाई, मानमुख मरह

मनमुख मरहै तिन किछु न सूझै, दुर्मत अज्ञान अंधारा, भव जल पार न पावै कभी, डूब मुए बिन गुर सिर भारा।

जाई। जिस नाम हृदय सोवे परवाह, जिस नाम हृदय तिस सद ही लाहा, जिस नाम हृदय तिस वड परवारा, नाम बिना मन मुख गावारा। जिस नाम हृदय तिस नहि चले आसन, जिस नाम हृदय तिस तख्त निवासन, जिस नाम हृदय सो साचा साहू, नामहीन नाही पत वेसाहू। जिस नाम हृदय सो सब मह जाता, जिस नाम हृदय सो पुरख विदाता।

आवण जान रहे सुख पाया, कहो नानक तत्तै तत् मिलाया। पहरो महल्ला पंजवा, कोट बिशन कीने अवतार, कोट ब्रह्मांड जाके त्रमसाल, कोट महेश उपाय समाए, कोट ब्रह्मे जग साजन लाए। ऐसो धनी गोविंद हमारा, वरन न साको गुण विस्थारा। रहाओ कोट माया जाके सेवकाए, कोट जी जाकी से जाए। कोट उपार्जना तेरे अंग, कोट भगत बस्त हर संग, कोट छत्रपत करत नमस्कार, कोट इंदर ठाटे है द्वार, कोट बैकुंठ जाकी दृष्टि माहे, कोट नाम जाकी कीमत नाहे, कोट पूरियत है जाके नाद, कोट अखारे चलत विस्माद, कोट सकत शिवाज्ञाकार, कोट जी देवे आधार, कोट तीर्थ जाके चरण मझार, कोट पवित्र जपत नाम चार, कोट पुजारी करते पूजा, कोट विस्थारण अवर न दूजा, कोट मेहमा जाके निर्मल हंस, कोट उस्तत जाकी करत ब्रह्मंस, कोट परलो ओपत निमक माहे, कोट गुना तेरे गणे न जाहे, कोट ज्ञानी कथे ज्ञान, कोट त्यानी तरत त्यान, कोट तपीसर तप ही करते, कोट मुनीसर मुन मह रहते। अविगत नाथ अगोचर स्वामी, पूर रहया कट अंतर जामी, जत कत देखो तेरा वासा, नानक कौ गुर कियो प्रगासा। पहरो महल्ला पंजवा, सतगुरु मोको कीनो दान, अमोल रतन हर दीनो नाम, सहज विनोद चोज आनंता, नानक कौ प्रभ मिल्यो अचिंता। कहो नानक कीरत हर साची, बहुर बहुर तिस संग मन राची। रहाओ अचिंत हमारे पूजन पाऊ, अचिंत हमारे लीचे नाऊ, अचिंत हमारे शब्द उदारु, अचिंत हमारे परे भंडारु, अचिंत हमारे कार्य पूरे, अचिंत हमारे लथे विसूरे, अचिंत हमारे बैरी मीता, अचिंतो ही ओ मन वस कीता, अचिंत प्रभु हम किया दिलासा, अचिंत हमारी पूर्ण आसा।

बैर, अचिंत हमारे मिटे अंधेर, अचिंतो ही मन कीर्तन मीठा, अचिंतो ही प्रभ घट घट जीठा, अचिंत मिट्यो है सगलो परमा, अचिंत वस्यो मन सुख बिश्रामा, अचिंत हमारे अनहत वाजै, अचिंत हमारे गोविंद गाजै, अचिंत हमारे मन पतियाना, निश्चल तनी अचिंत पछाना, अचिंतो उपजो सगल विवेका, अचिंत चरी हाथ हर हर टिका, अचिंत प्रभु तुर लिखिया लेख, अचिंत मिल्यो प्रभु ठाकुर एक, चिंत अचिंता सगली गई, प्रभ नानक नानक नानक मई, भैरो बाणी भगता की, कबीर जियो घर पहला

खाओ रहाओ, नाओ मेरे खेती नाओ मेरे बारी, भगत करूं जन शरण तुम्हारी।

राजा राना राम राजा नौ निदमीर संपै हीत कलत धन तीरै रहा आवत संग न जात संगाती कहा भयो दर बांधे हाथी लंका गढ़ सोने का भया मूर्ख रावण क्या ले गया कह कबीर किच गुण विचार चले जुवारी दोय हत चार मैला ब्रह्मा मैला इंद रव मैला मैला है चंद मैला मलता इहो संसार एक हर निर्मल जाका अंत न पार रहाओ मैले ब्रह्मंडाए कै ईस मैले निष्बा सुर दिन तीस मैला मोती मैला हीर मैला पौन पाव कर नीर मैले शिव शंकरा महेश मैले सिद्ध साधिक अर्पेख मैले जोगी जंगम जटा सहेत मैली काया हंस समेत कह कबीर तेजन परवान निर्मल ते जोरा मह जान मन कर मक्का किबला कर देही।

தான் குருநானக்கா தான் குரு.

जी इन्ना सौदा स्पीकर चलो समझो त्रो

ਇਸ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਥਾਪ ਕੀ

Вот.

ओंकार वाहिगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय वार। श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं प्रथम भगवती सिमर कै गुरु नानक लेंके आए। फिर अंगद गुरु ते अमरदास राम दासें हुई सहाय। अर्जन हर गोबिंद नो सिमरो श्री हर राय श्री हर कृष्ण त्याई है। जिस डिठे सब दुख जाए तेग बहादुर सिमरै कर नौ निदावै ताए। सब थाई हुए सहाय दसवें पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी। सब थाई हुए सहाय दसा पातशाहियां दी जोत। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के पाठ दर्शन दीदार दा ध्यान करके बोलो जी वाहिगुरु। पंजा प्यारियां चौहान साहबजादियां चालियां मुक्तियां हठियां जपियां तपियां जिन्हां नाम जपिया वंड छकिया देख चलाई तेग वाही देख के अनगिट कीता तिन्हां प्यारियां सचियारियां दी कमाई दा ध्यान करके खालसा जी बोलो जी वाहिगुरु। जिन्हां सिंघां सिंघणियां धर्म हे सीस दित्ते बंद बंद कटवाए खोपरियां लुहाइयां चरखड़ियां ते चढ़ियारियां नाल चराए गए गुरुद्वारियां दी सेवा लई कुर्बानियां कीतियां धर्म नहीं हारिया सिखी केसा सुहासा नाल निभाही तिन्हां दी कमाई दा ध्यान करके खालसा जी बोलो जी वाहिगुरु। पंजां तख्तां सरबत गुरुद्वारियां दा ध्यान करके बोलो जी वाहिगुरु। प्रथमे सरबत खालसा जी की अरदास है जी। सरबत खालसा जी को वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु चित आवे चित आवन का सदका सर्व सुख होवे जहां जहां खालसा जी साहिब तहां तहां रचिया रियाय देख तेग फतेह बिरध की पैज पंथ की जीत श्री साहिब जी सहाय खालसे जी के बोल वाले बोलो जी वाहिगुरु। सिखां दा मन नीवा मत उची मत पत दे राखे आप वाहिगुरु हे अकाल पुरख अपने पंथ दे सदा सहाय दतार जियो। श्री ननकाणा साहिब ते होर गुरुद्वारे गुरधाम जिन्हां तों पंथ नूं विछोड़िया गया है खुले दर्शन दीदार सेवा संभाल दा दान प्यारे खालसा जी नूं बख्शिश करो। हे निमाणिया दे मान नितानिया दे तान न्योटिया दे उठ सच्चे पातशाह दसों पातशाह को आत्मक जोत धन धन धन। गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी आप जी का पावन पवित्र फुरमान है लख खुशियां पात शाहियां जे सतगुरु नदर करे निमखेक हर नाम दे मेरा मन तन शीतल होए दे मां वाक अनुसार गरीब नवाज आप जी ने कृपा कीती अज आप जी के हजूर सुभाग जोड़ी दे आनंद कारज होए। सुभाग जोड़ी बेटा यू जौन चौ उस पुत्र श्री सुजीन चौ अते बीबी यून ही चौ अते बच्ची जसजीत कौर धनोता सपुत्री सरदार गुरदेव सिंह धनोता बीबी रविंद्र कौर धनोता सच्चे पातशाह जी सुभाग जोड़ी दे आप जी के हजूर आनंद कारज होए हन। सतगुरु जी आनंद कारज की मर्यादा नूं निभांदियां होईयां बेअंत भुल आप जी ने खिमा कर देनियां अगे तो सावधानता बख्शिश करनी रहमत करनी सुभाग जोड़ी दे सिर ते मेहर भरिया हथ रखना ग्रिस धर्म दियां खुशियां खेड़े बख्शिश करके नवाजना कृपा करनी गरीब नवाज दोहां परिवारां विच आपसी प्रेम प्यार सुभाग दी दात बख्शिश करके नवाजना सेवकां दे सारे कार्ज रास करने गरीब नवाज सुभाग जोड़ी वालों आप जी ने सुंदर पुशाके भेट किए गए आप जी ने अंगीकार करने लोग परलोक पढ़ते कजने बख्शिश किए भंडारियां विचों कड़ा प्रशादी देग हाजर है दर प्रवान हुए गरीब नवाज बेन संगता ने हाजरियां भरिया तिल फुल पेटावा माया आप जी के चरणा विच अर्पण कीती अते गुरु घर दियां चल रही कार सेवा दे निमित बेन संगता ने अपनिया किरत कमाईया नूं सफलियां करदियां दसवंत भेटा किया सतगुरु जी सभना की माया सफली करनी कारोबारा विच वाधे पाउणे चढ़दियां कला बख्शिश करके नवाजना पावन पवित्र हुक्म बख्शो जी हुक्म ते चलण की मत बुद्ध प्रदान करो से प्यारे मेर जिन्हां मिले आप जी का नाम चेता वै नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाणे सरबत दा भला। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। दोहरा

अंत मूर्ख अंध घोर संत चोर राम असंत अमर कर जाए असंत कल वाए संत पापी पाप असंत कूड़े आर करे फिर संत मलेच मल पाए असंत निंदक करें नानक नीच कहें जा मारे न जा।

आकाणी ब्रह्माओं सत्वान कवन सुवेला भगत कवन।

निर्भौ निर्वय अकाल मूर्त अजुनी सैगम गुर प्रसाद। जब आदि सच जुगाद सच है भी सच नानक।

Sankt Paul, Sankt Rampenweg, Sankt Dogmann.

संत अमर कर जाए, संत गड़बड़ हटे अपना, संत पापी पाप, संत कूड़े आर करे फिर, संत मलेच माल पाक, संत निंदक

अशांत मूर्ख अंध घोर अशांत।

first

ਇੱਥੇ ਖੱਪ ਪੈਂਦਾ ਇੱਥੇ ਲੈ ਲੈ।

Patrick.

प्रकाश विश्वित तरसी थापी तर्म कर्मी कर्मी सोहन मन प्रवान सदरी कर्म सोवन कथ आई उथ पाए नानक गया कर्म खंड का एहो ज्ञान खंड का किते पौन पानी वह संतर किते कान में किते परमे का करिए गुरु ग्रंथ में।

ਨਾਨਕ ਅੰਤ ਨਾ ਅੰਤ

अजूनी सैगम गुर प्रसाद। जब आदि सच जुगाद सच है भी सच

संत मूर्ख अंध घोर संत चोर राम असंत अमर कर जाए असंत कलवट हृदय कमाए संत पापी पाप असंत कूड़े आर करे फिराए संत मलेच माल पाखाए असंत निंदक करे पा नानक नीच कहे जा मारे न जावा ते जो सुख पावे सही परिकार से सदा सलाम संत नाम संत नाम राम राम संत लो असंत कहे।

दुनिया में जीता लाओ अंतर करती रग मर लाओ सब गुण तेरे बिना ही होए बिन गुण कीते मत होए बस आस्ताई ब्रह्म

अंत न सुनी कह नान अंत न करने देना अंत न देखन सुन न अंत न जाप जा मन मान।

ਸੁਖ ਮਚ ਪਿਆਲੇ ਰਾਮ ਰਤਨ ਪਾਏ ਤੇ

सोहन प्रवानी कर्म प्रवानी कच्छ पाई उत पाए नानक गया कर्म खंड का।

ಕಲ್ಪನಾ

कृता निर्भौ निर्वय अकाल मूर्त अजुनी सैदम गुर प्रसाद जप आदि सच जुगाद सच है भी सच।

असंख मूर्ख अंध घोर असंख चोर राम असंख अमर कर जाए असंख कालवड हत्या कमाए संख पापी पाप असंख मूड़े आर करे फिराए संख मलेच माल पाखाए असंख निंदक करे पास नानक नीच कह विचार मारे न जावा एक जो सुख पावे सही कलिका सदा सुनाम संख नाम संख नाम राम राम संख दो असंख कहें सिर्फ।

0: कैसे कैसे रत्न तुम हमको
1: कितनी पानी कैसे पाप
0: कितनी सुखी नानक अंत ना

अजुनी सैगम गुर प्रसाद। जब आदि सत्य जुगाद सत्य है भी सत्य ना।

मुक्त पंथ जान्यो तै नाहिन, धन जोरन को धाया, अंत संग काहू नहीं दीना, बिरथाया बंधाया। न हर भजो न गुरजन सेव्यो, न उपजो कच ज्ञाना, काटी माय निरंजन तेरा तै खोज तू दियाना। बहुत जन्म प्रमत तै हार्यो, आस्थित मत नहीं पाई, मानस दे पाए पद हर भज, नानक बात बताई। सोठ महला नवा मन रे प्रभ की शरण विचारो, जे सिमरत गण का सी उदरी, ताको जास उधारो रहाओ। अटल भयो ध्रु जा कै सिमरन, अर निर्भय पद पाया, दुख हरताए विद को स्वामी, तय काहे मिसराया। जब ही शरण गही कृपा, निद गज ग्राह ते छूटा, मेहमान नाम कहा लो

ਜਾ ਸਨਮ ਜਨਮ ਗਵਾਏ ਮਹਲਾ ਤੀਜਾ ਸਿੱਧ ਸਾਧਕ ਨਾਵੈ ਨੋ ਸਭ ਖੋਜਦੇ ਥੱਕ ਰਹੇ ਲਿਵ ਲਾਏ ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਨੈ ਨਾ ਪਾਇਓ ਗੁਰਮੁਖ ਮਿਲੈ ਮਿਲਾਏ ਬਿਨ ਨਾਵੈ ਪਹਿਨਣ ਖਾਣ ਸਭ ਬਾਧ ਹੈ ਤਿਗ ਸਿੱਧੀ ਤਿਗ ਕਰਮਾਤ ਸਾ ਸਿੱਧ ਸਾ ਕਰਮਾਤ ਹੈ ਅਚਿੰਤ ਕਰੇ ਜਿਸ ਦਾਤ ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਹਰ ਨਾਮ ਮਨ ਵਸੈ ਇਹਾ ਸਿੱਧ ਇਹਾ ਕਰਮਾਤ ਪੌੜੀ हम ढाडी हर प्रभ खसम के नित गावे हर गुण चिंता हर कीर्तन करे हर जा सुनाए तिस कबला कंता हर दाता सब जगत भिखारिया मंगत जन जनता हर देवो दान दयाल होए विच पाथर क्रिम जनता जन नानक नाम ते आया गुरमुख तनवंता श्लोक महला तीजा पढ़ना गुड़ना संसार की कार है अंदर तिसना विकार हो मैं विच सब पढ़ सके दूजे पाए खुवार सो पढ़िया सो पंडित बिना गुर सत करे विचार अंदर को जै तत लहै पाए मुख द्वार गुण निदान हर पाया सहज करे विचार धन व्यापारी नानका जिस गुरमुख नाम आधार महला तीजा मिण मन मारे कोई न सिजई वेखो को लिवलाए भीख धारी तीर्थी भव थके नाए मन मारिया जाए गुरमुखे मन जीवत मरै सच रह लिवलाए नानक इस मन की मलियों उतराए हो मैं सब जलाए पौड़ी हर हर संत मिलो मेरे भाई हर नाम दे ढावो एक किनका हर हर सिंगार बनावो हर जन हर कापड़ पहरो खिमका ऐसा सिंगार मेरे प्रभाव है हर लागे प्यारा प्रेमका हर हर नाम बोलो दिन राति सब किलबे काट एक पलका हर हर दयाल हो वह जिस ऊपर सो गुरमुख हर जप जिनका श्लोक महला तीजा जन्म जन्म की इस मन को मल लागी काला हुआ स्याओ खनली धोती उजली ना हो वही जैसो धोवन पाओ गुर प्रसादी जीवत मरै उल्टी हो वह मत बदलाओ नानक मैल न लगई ना फिर जो नी पाओ महला तीजा चौ जुग काल काली कांडी एक उत्तम पदवी इस जुग माहे गुरमुख हर कीर्त फल पाई है जिनको हर लिख पाहे नानक गुर प्रसादी अन दिन भगत हर उच्च रहे हर भगती माहे समाहे पौड़ी हर हर मेल साध जन संगत मुख बोली हर हर भली बाण हर गुण गावा हर नित चवा गुरमती हर रंग सदा मान हर जप जप औखद खाद्या सब रोग वाते दुखा कान जिन्ना सास गिरास न विसरे से हर जन पूरे सही जान जो गुरमुख हर आराधे तिन चुकी जमकी जगत कान श्लोक महला तीजा रे जाने उथारे दबे ओहे रे जाने उथारे दबे ओह सुत्या गई बिहाय सतगुर सतगुर का शब्द सुन न जाग्यो अंतर ना उपजो चाओ शरीर जलो गुण बाहरा जो गुर कार न कमाए जगत जलंदा डिठ मैं हो मैं दूजा पाए नानक गुर शरणाई उबरै सच मन शब्द त्याए महला तीजा शब्द रते हो मैं गई शोभा बंटी नार फिर कह पाणा सदा चलै ता बनिया सिगार से सुहावी सदा फिर रावे हर पाया हर वर पाया नार ना हर मरै न कदे दुख लागे सदा सुहागण नार नानक प्रभ मेलै गुर कहे प्यार पौड़ी जिन्ना गुर गो प्याय अपना ते नर बुरियारी हर जियो तिनका दर्शन ना करो पापिष्ट हत्यारी ओ घर घर फिरै कसुद मन ज्यो धरकट नारी वडभागी संगत मिले गुरमुख सवारी हर मेला संगुर दया कर गुर को बलिहारी सलोक महला तीजा गुर सेवा ते सुख उपजाए फिर दुख न लग गया ए जमन मरना मिट गया काल का किछ न बसाए हर से ती मन रव रया सच्चे रया समाए नानक हो बलिहारी तिन को जो चलन सतगुर पाए महला तीजा बिन शब्द सुध न हो वही जे अनेक करे सिगार फिर की सार न जाने दूजे पाए प्यार साख सुध साख लखनी नारी विच कुनार पौड़ी हर हर अपनी दया कर हर बोली बैणी हर नाम त्याई हर उचरा हर लाहा लैणी जो जप दे हर हर तिनसरा तिनहो कुरबैणी जिन सतगुर मेरा प्यारा रादया तिन जन देखा नैणी हो वारिया अपने गुरु को जिन मेरा हर सज्जन में लिया सैणी श्लोक महला चौथा हर दासन स्यो प्रीत है हर दासन को मित हर दासन कह वास है जो जनती कह वास जनत हर के दास हर ध्याय दे कर प्रीतम स्यो ने हो कृपा कर कह सुनो प्रभ सब जग में वरसै में हो जो हर दासन की उस है सा हर की वड्याई हर अपनी वड्याई पाउंदी जन का जयकार कराई
सो हर जन नाम त्याय दा हर हर जन एक समान जन नानकार का दास है हर पैज रखो भगवान महला चौथा नानक प्रीत लाई तिन सच है तिस बिन रहन न जाई सतगुर मिले ता पूरा पाई है हर रस रसन रसाई पौड़ी रहन दिन सरबा तू है ही गामना जी जंत सरबत नाओ तेरा त्यावना तू दाता दातार तेरा दिता खामना भगत जना कै संग पाप गवावना जन नानक सद बलिहार है बल बल जावना श्लोक महला चौथा अंतर ज्ञान भई मत मध्यम सतगुर की प्रतीत नाही अंदर कप सब कपटो कर जाना है कपटे खपे कफाई सतगुर का पाना चेतना वाय अपना है स्वाय फिराई कृपा करे जे अपनी ता नानक सब समाई महला चौथा मन मुख माया मोह व्यापै दूजे पाए मनुआ थिर नाहे अंदन जलत रहे दिन राती हो मैं खपे खपाहे अंतर लो महा गुबारा तिनकै निकट ना कोई जाहे ओए आप दुखी सो कबो न पावे जन्म मरे मर जाहे नानक बख्श लय प्रभु साचा जे गुर चरणी चित लाहे पौड़ी संत भगत परवान जो प्रभु आया सही बिचखण साचा जे गुर चर सही बिचखण जंत जिनी हर त्याया अमृत नाम निदान भोजन खाया संत जना की धूर मस्तक लाया नानक भय पुनी धा तीर्थ नाया श्लोक महला चौथा गुरमखन तरसात है मंत्र नाम समाए नामो चितवै नाम पढ़ाए नाम रह लिव लाए नाम पदार्थ पाया चिंता गई बिलाए सदगुर मिलिय नाम उपजाय तिसना भुख सब जाए नानक नामे रत्या नामो पल्लय पाए महला चौथा सात गुर पुरख जिमारिया परम भ्रमिया कर छोड़ गया उस पिछे वजै फकड़ी मोकाला गै पया उस अरल बरल मोह निकल है न झगू सुटदा मुआ क्या हो किसे ही दै की तय जा धुर किरत उसका एहो जिहा पया जिथे वो जाए तिथे वो झूठा कूड़ बोलै किसे ना भावै जिथा ओ जाए तिथा ओ झूठा कूड़ बोले किसे ना भावै वेखो भाई वड्याई हर संतो स्वामी अपने की जैसा कोई करे तैसा कोई पावै एहो ब्रह्म विचार होवै दर साचै अगो दे जन नानक आख सुनावै पौड़ी गुर सच्चा बद्दा थे रखवाले गुर दिते पूर्ण होई आस गुर चरनी मन रते गुर की पाल बेअंत अवगुण समहते गुर कपनी कृपा धार अपने कर लेते नानक सद बलिहार जिस गुर के गुण इते श्लोक महला पहला ता की रजाई लेख्या पाए अब क्या की जय पांडे हुक्म हुआ हासल तदे होए निबड़िया हंडै जी कमांदे महला दूजा नाक नाथ खसम हाथ किरत धक्के दे जहां दाने तहां खाने नानका सच हे पौड़ी सबे गला आप साठ बहालियो न आपे रचन रचाए आपे ही घालियो न आपे जन तो पाए आप प्रतपालियो न दास रखे कंटलाए नदर निहालियो न नानक भक्त जन आया आनंद पाओ दूजा जालियो न श्लोक महला तीजा ए मन हरजी त्याय तू एक मन एक चित ला पाए हर किया सदा सदा वड्याईया दे न पछोताए हो हर कह सद बलिहार नै जित सेवियै सुख पाए नानक गुरमुख मिल रहे हो मैं सब जलाए महला तीजा आपे सेवा लाईया नै आपे बख्श करे सबना का मां प्यो आप है आपे सार करे नानक नाम ध्यान तिन निज घर वास है जुग जुग सोभा होए पौड़ी तू करण कारण सम्राट है करते मैं तुझ बिने वरना कोई तो आपे सिष्ट सिरजिया आपे पुनगोई सब इको शब्द वरतदा जो करे सोई वड्याई गुरमुख दे प्रभ हर पावे सोई गुरमुख नानक आराध्या सब आखो धन धन धन गुर सोई सब इको शब्द वरतदा जो करे सोई वड्याई गुरमुख दे प्रभ हर पावै सोई गुरमुख नाम आराध्या सब आखो धन धन धन गुर सोई सुध राग सुरठ बाणी भगत कबीर जी की घर पहला

बुत पुजु मुए तुर्क मुए चरनाई ओले जारे ओले गाडे तेरी गत दो ना पाई। मन रे संसार अंध गहरा चौदस पसरियो है जम जीवरा रहाओ। कपत पड़े पड़ पंडित मुए कपत पड़ पड़ कपता मुए कपड़ के दारे जाई। जरा तार तर जोगी मुए तेरी गत इन्हें ना पाई। दर्ब संज संज राजे मुए गडले कंचन पाई। वेद पड़े पड़ पंडित मुए रूप देख देख नारी। राम नाम सबे भगूते देखो निरख निरख शरीरा। हर के नाबिन किनगत पाई कह उपदेश कबीरा। जब जरिए तब होए भस्म तन रहे किरम दल खाई। काची गागर नीर परत है या तन की ए बढ़ाई। काय पैया फिर सो फूलिया फूलिया जब दस मास उर्द मुक्त रस्ता सो दिन कैसे भूलिया रहो। जो मत माखी त्यो स्टोर रासा स्टोर रासा जोर जोर सन किया। मरसी बार लेहो लेहो करी है पूछ रहन क्यों दिया। देहरी लो बरी नार संग पई आगे सजन सोहेला। मार काट लो सब लोग कुटुंब पयो आ गए हंस अकेला। कह

वेद पुराण सब है मत सुन के करिए कर्म की आशा। कालग्रस्त सब लोग से आने उठ पंडित बह चले निराशा। मान रे सरयो न एक काजा तजो न रघुबत राजा रहो। बानखंड जाए जोग तब की नो कांत मूल चुन खाया। नादी बेदी सब दी मोनी जम के पटे रख लिखाया। भक्त नारदीर देना आई काज कुछ तन दीना। राग रागनी डिम्ब हो बैठा उन हर पै क्या लीना। करु काल सब जग ऊपर ऊपर माए लिखे परम ज्ञानी। कौक बिरजन पै खाल से प्रेम पग जे जानी। कर दूजा दो

हमरा परों गया पौ पागा जब राम नाम चित लगा बाजीगर डंक बजाई सब खलक समा से आई बाजीगर स्वांस केला अपने रंग रवे केला कसनी कै पकना जाई सब कद कत रही लुकाई जाको गुरमुख आप बुझाई ताकि हृदय रह समाई गुर किंचित कृपा कीनी सब तन मन दे हर लीनी कै कबीर रंग राता मिलो जग जीवन दाता जाके निबंग दूध के ठाटा समुद बिलोबन को माटा ताकि हो बिलोबन हारी क्यों मेटे गो छाड़ छाज तुआरी चेरी छू राम न करत पतारा जग जीवन प्राण अधारा राव तेरे गले सोक बग पेरी सू कर कर मैया फेरी तू अजू न चेत चेरी तू जम पपी है हेरी पब कर्ण करावन हारी क्या चेरी आद बिचारी सोई सोई जागी जित लाई तित लागी चेरी तैस मत कहां ते पाई जाते भ्रम की लीक मिटाई सो रस कबीरे जानिया मेरो गुर प्रसाद मन मानिया जे बाज न जिया जाई जो मिले सकाल अकाई सद जीवन पलो कहाई मुए बिन जीवन नाही अब क्या कथिय ज्ञान बिचारा निज निरकत कत व्यवहारा रहाओ कासे कुंकम कुंकम चंदन गारिया बिन नैनो जगत निहारिया पूत पिता इक जाया बिन ठाहर नगर बसाया जाजक जनदाता पाया सो दिया न जाई खाया छोड़या जाई न मूका और न पै जाना चूका जो जीवन मरना जाने तो पांच साल सुख माने कबीरे सो तन पाया हर पेट से आप मिटाया क्या पढ़िए क्या गुनिए क्या वेद पुराना सुनिए पढ़े सुने क्या हुई जो सहज न मिले हो सोई हर का नाम न जब गवारा क्या सोचे बारंबारा रहाओ अंधेरे दीपक चाहिए एक बस गोचर लिया बस गोचर पाई कट दीपक रहा समाई कह कबीर अब जानिया जब जानिया तो मन मानिया मन माने लोक न पतीजै न पतीजै तो क्या की जै हृदय कपट मुख ज्ञानी टूटे कहा बलोब पानी काया माज से कौन गुना जो काट पीस रह मलना रहाओ लोकी अक्षर तीर्थ नाई कौरापन सौ न जाई कह कबीर बिचारी पव सागर तार मुरारी करो सोठ एक ओंकार सतगुर प्रसाद बहु पर पंच कर पर तन ल्यावे सतदारा सुतदारा पै आन लुटावे मन मेरे पूले कपना की जय आतन बेरा तेरे जी है पहली जय राव छिन छिन तन छीजे जरा जनावे तब श्री ओक कोई पानू ना पावे कैद कबीर कोई नहीं तेरा हृदय राम की न जपे सवेरा संतो मन पवने सुख बनया फिर जोग प्राप्त गनया राव गुरसिख लाई मोरी जिस मिर्ग पड़त है चोरी मूंद लिए दरवाजे बाजी ले अन दवाजे कुंभ कमल जल भरिया जल बेटिया उबा करया कौक वीर जन जानिया जो जानिया तो मन मानिया राग सोठ भूखे भक्त न की जय जह माला अपनी ली जय ओ मांगो संत नरेना है नाई किसी का देना माधो कैसी बने तुम संगे आपन देव तले वो मंगे राव
शेर मांगो चूना औ क्यों संग लूना, आज शेर मांगो दाले वो कह दोनों भक्ति वाले, खाट मांगो चौपाई सिरहाना अबर तुलाई, ऊपर को मांगू खींदा तेरी भक्त करे जन खींदा, मैं नाही कीता लभो इक नाव तेरा मैं फबो, कह कबीर मन मानया मन मानया तो हर जानया, राग सोट बाणी भक्त नाम देव जी की कर दूजा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद जब देखा तब गावा तो जन तीरज पावा, आज सुमाइल हो रे सतगुर पीटिले देवा राव, जय चिल मिलकार दिसंता ते आनंद शब्द भजंता, जोसी जोत समानी मैं गुर प्रसादी जानी, रतन कमल कोठरी चमकार बीजल सही, मेरे नाही दूर निज आत्म रहया पर पूर, जय अनहत सूर उजियारा जय दीप जले चंचारा, प्रसादी जानया जन नामा सहज समानया, कर चुकसा सोरठ पाड़ पड़ोसन पूछले नामा, का पहचान जवाई हो तो पै दुगनी मजूरी दे हो, मुको बेड़ी दे हो बताई हो, रिबाई बेड़ी दिन न जाई

कोई जान चबावे हो, लोग कटंब सहू से तोरा तो आपन बेड़ी आवे हो। ऐसो बेड़ी वरण न साको सब अंत सब ठाई हो। गूंगे गूंगे मां महा अमतरस चाख्या तुझे कहन ना जाई हो। बेड़ी के गुण सुन री भाई जल बन श्रू सा प्यो हो। नामे के स्वामी सी बहोरी लंक बपीखण।

राम स्नेही जे मिल ऐ देह जुसदेही राव मिल पारद कंचन होया मुखमन सारतन पुरोया निज भाव पया भ्रम पागा गुर पूछे मन प्रतियागा जल पीतर कुंभ समानया सब राम एक कर जानया उच्ची ली है मन मानया जन नामे तत बिछानया राग सोठ पानी भगत रविदास जी की एक ओंकार सतगुर प्रसाद जब आम होते तब तू नाही अब तू ही मैं नाही अनल अगम जैसे लहर में ओदत जल केवल जन माही जल माही अनल अगम जैसी लहर में ओदत जल केवल जन माही माधवे क्या कहिए प्रम ऐसा जैसा मानी होए न तैसा रहाओ नरपत एक सिंहासन सोया चुपने पै पिखारी अचत राज बिछरत दुख पाया सोगत भई हमारी राज प्रियंग प्रसंग जैसे है अब कज मर्म जनाया अनक कटक जैसे फूल परिये अब कैसे कहना आया सर्वे एक अनेक है स्वामी सब कट भोग वह सोई कह रविदास हाथ पै नीर है सहज होए सोई जो हम बांधे मुँह फास तम हम प्रेम बंधन सुम बांधे अपने चूटन को जतन करो हम चूटे तुम हरा दे माधवे जानत हो जैसी तैसी अब कहा करोगे ऐसी रहाओ मीन पकड़ पाक्यो हर काट्यो रांध कियो बह बानी खंड खंड कर भोजन कीनो तो न बिसरो पानी पापन बापे नाय किसी को पावन को हर राजा वो पटल सब जगत व्याप्यो भक्त नहीं संतापा कह रविदास भक्त एक बाडी अब एक आस्यो कही है क्या कारण हम तुम आरा दे सो दुख अजू सही है लाभ जन पुण फल पायो पिता जाद अब भी कह राजे इंद्र समसर गृह आसन बिन हर भक्त कहो क्यों लिख विचार्यो राजा राम को रस धीरस अनरस बिसर ना जाही रहाओ जान अजान पे हम बावर सोच देश जाही इंद्रिय सबल निबल विवेक बोध परमार्थ परवेश नहीं कहियत आन अचरियत मन कच न परे अपर माया कैरव दास दास दास मत पर कोप करो जी दया सुख सागर सुरतर चिंता मन काम देन बस जाके चार पदार्थ दशा सिद्ध नामृत कर तलता के हर हर ना जपे रसना अवर सब त्याग बचन रचना राव नाना ज्ञान पुराण वेद वेद चौथी अखर माही ब्याज विचार करो परमार्थ राम नाम सरनाही सहज समाध पाद रहत पुण बड़े पाग लिव लागी कैरव दास प्रगाद हृदय चार जन मरण पै भागी जो सुम गिरवर सोम मे मोरा जो सुम चांद तो हम पै है चकोरा माधवे तुम ना तोड़ो तो हम नहीं तोर है तुम जो तोर कवन सो जो रह राव जो तुम जीवरा सो हम होम बासी जो तुम तीर्थ सो हम जाती साची प्रीत हम सो जो जोरी तुम सो जोर अवर संग तोरी जय जय जाओ सा तेरी सेवा तुम सो ठाकर और ना देवा तुमरे भजन कटे जम फासा पास एस गावे रविदासा जल की पीस पवन का थंबा रखत बूंद का

जैसे सरबर पंख बसेरा राव राखो कंध असारो नीवा साढ़े तीन हाथ तेरी सेवा पंखे बाल पग फिर डेरी योजन होएगो पतम की टेरी ऊंचे मंदर सुंदर नारी राम नाम बिन बाजी हारी मेरी जात कमीनी पांत कमीनी ऊंचा जन्म हमारा सुन सरनाक पे राजा रामचंद कहर बसात चुमारा कि मरठा गांट न जनही लोग ठावे पनही रहाओ हार नहीं जे सो पाओ नहीं रामी ठाओ रूपाओ लोग गांट गांट खरा भी गूचा वो बिन काटे जाए पहुंचा रविदास जपे राम नामा मोह जम सो नाही कामा राग सोठ बाणी भगत पीखन की एक ओंकार सतगुर प्रसाद नहनो नीर बहसन खीना पै कीत दुध बानी रूसा कांट शब्द नहीं उचरे अब क्या करे परानी राम राय हो हे पैद बनवारी अपने संत है लेहु उबारी रहाओ मासे पीर शरीर जलन जलन है करे जे माही ऐसी बेदन उठ खरी पई बाका औखद नाही हर का नाम अमृत जल निर्मल ए औखद जग सारा गुरु प्रसाद कह जन भीखना पावु मोख द्वारा ऐसा नाम रतन मोलक पुण पदार्थ पाया अन जतन कर हृदय राखिया जतन न छपे छुपाया हर गुण कैसे कह न जाई जैसे गूंगे की मिठाई रहाओ रसना रामत सुन सुख श्रवना किस चेते सुख होई को पीखन दो नैन संसुखे जै देखा तै सोई। सनासी महला पहला कर पहला चौक दे एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरपौ निर्भैर अकाल मूर्त अजूनी सहपंग गुरप्रसाद जीव

Coraz da pisote,

निर्भौ निर्वै अकाल मूर्ति अजूनी सैगम गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होशी।

अशांत मूर्ख अंध घोर अशांत चोर राम अशांत अमर कर जाए अशांत कालवट हत्या कमाए शांत पापी पाप अशांत कूड़े आए फिर शांत मलेच मार पाक खाए अशांत निंदक करें पा नानक नीच कह चार मारे न जामा के जो तुम पावे सही करिका सदा सलाम संत नाम संत नाम राम नाम संत दो असंत कहें सिर्फ।

ਗੁਣ ਤੇਰੇ ਬਿਨ ਗੁਰਜੀਤੇ ਸਵਸਥ ਆਸਤਾਨੀ ਬ੍ਰਹਮਾ ਸਤ ਸੁਹਾਨ ਕਰਮ ਸਤ।

0: ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਰੱਖਣ ਤੂੰ
1: ਕਿੱਥੀਆਂ ਪਾਣੀ ਕਿੱਥੇ ਪਾਸ ਕਿੱਥੀਆਂ ਸੁੱਖ

निर्भौ निर्वैर अकाल मूर्त अजूनी सैगम गुर प्रसाद। जब आद सच जुगाद सच है भी सच

असंख मूर्ख अंध घोर असंख चोर राम असंख अमर कर जाए असंख कल वढ़ कमाए संख पापी पाप असंख कूड़े आर मरे फिराए संख मलेच मल पाए असंख निंदक करे पा नानक नीच कह क्या मारे न जाना के जो तुम पावे सही कलिका।

ఆకాశాన్ని బ్రహ్మ తత్సు ఆనంతరం కమణ సువేంద్ర భగత్ కమణ.

ਪਿਆਰ ਕਹੀਏ ਗੁਰਦਾ ਇਹ ਵੱਡਾ ਸਾਹਿਬ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ